हाँ फिर सुन लो कि हमने मूसा को किताब इनायत की थी ताकि हम उन लोगों पर जो नेकुकार हैं नेमत पूरी कर दें, और उसमें हर चीज का बयान है और हिदायत है और रहमत है ताकि उनकी उम्मत के लोग अपने परवरदिगार के रूबरू हाजिर होने का यकीन करें। और ऐ कुफ्र करने वालों, ये किताब भी हम ही ने उतारी है बरकत वाली, तो इसकी पैरवी करो और अल्लाह से डरो ताकि तुम पर मेहरबानी की जाए।

और इसलिए उतारी है कि तुम यूं न कहो कि हमसे पहले दो ही गिरोहों पर किताबें उतरी हैं और हम उनके पढ़ने से बेखबर थे, या ये न कहो कि अगर हम पर भी किताब नाजिल होती तो हम उन लोगों की निस्बत कहीं सीधे रस्ते पर होते। सो अब तो तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से दलील और हिदायत और रहमत आ गई है, तो उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह की आयतों की तकजीब करे और उनसे लोगों को फेरे। जो लोग हमारी आयतों से फेरते हैं उस फेरने के सबब हम उनको बुरे अजाब की सजा देंगे। ये इसके सिवा और किस बात के मंतजर हैं कि इनके पास फरिश्ते आए या खुद तुम्हारा परवरदिगार आए या तुम्हारे परवरदिगार की कोई खास निशानी आ जाए। जिस रोज तुम्हारे परवरदिगार की खास निशानी आ जाएगी तो जो शख्स पहले ईमान नहीं लाया होगा उस वक्त उसे ईमान लाना कुछ फायदा नहीं देगा, या जिसने अपने ईमान की हालत में नेक अमल नहीं किए होंगे तो गुनाहों से तौबा करना मुफीद न होगा। ऐ पैगंबर, इनसे कह दो कि तुम भी इंतजार करो, हम भी इंतजार करते हैं।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है, GAFM 88 नेटवर्क, GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 9:30 AM. This time check is brought to you by
1: Minus ho sari tensions jab ho aapke paas Zong 4G ki plus offer. Let's get digital with Zong 4G.
2: छा अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी? हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो. पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम. अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग. इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक. रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट. हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान. वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं. बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप. वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
3: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट. कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है. बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए. इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क. अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी. बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का.
0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़.

0: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार। क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ, आवाज की डोर से बंधा हुआ,
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल हमनवा बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: It's 10:45 AM. This time check is brought to you by
2: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे। अस्करी बैंक।
3: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट।

0: मिले फ्री चेकबुक डेबिट कार्ड बैंकर्स चेक ई स्टेटमेंट ऑनलाइन बैंकिंग अलहबी डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क अलहबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अलहबीब रिश्ता भरोसे का
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: आप सुन रहे हैं
3: GFM 88
2: नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: इस ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: वफ़ाक़ी बजट की तारीख तब्दील, बजट 10 जून बदरा 12 जून से पेश थियण जो इम्कान। नाणे वारी वज़ारत हतमी तारीख जो ऐलान अॼु कंदी। ज़रियनि मूजिब वफ़ाक़ी बजट 10 जून से पेश न करण जो फैसलो वज़ीर आज़म ऐं सदर विच में मुलाक़ात दौरान कयो वियो। वफ़ाक़ी बजट पेश करण जी नई तारीख़ जो ऐलान नाणे वारी वज़ारत अॼु कंदी। सूबनि पारां 1700 अरब रूपया वफ़ाक खे फराहम करण बाबति फैसलो कमेटियूं कंदियूं। क़ौमी इक़्तिसादी काउंसिल जो इजलास बि हाणे 10 जून ते थींदो। इजलास में तरक़ियाती बजट जी मंज़ूरी ॾिनी वेंदी।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटी।
0: गिलगित बल्तिस्तान में इतिहादी हुकूमत छण जो इम्कान। चूंडनि में पीपल्स पार्टी खे सरसी। 24 मां 22 सीटनि मां गैरहतमी गैर सरकारी नतीजा अची विया। पीपल्स पार्टी 10 तकनि ते कामयाब। नवाज लीग 4 ऐं आज़ाद उमेदवार 7 सीटूं खणी विया। MWM 1 सीट खटी। ॿिनि तकनि जा नतीजा अञा ताईं रहियल। ज़रियनि मूजिब गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी ऐं नवाज लीग जी इतिहादी हुकूमत ठाहिण जो इम्कान आहे। वॾो वज़ीर पीपल्स पार्टीअ जो ऐं गवर्नर नवाज लीग जो हूंदो। वज़ारतनि जी विर्छ 60 ऐं 40% वारी हिन फार्मूले तहत कई वेंदी। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो चूंडनि में कामयाबी जे जियारनि खे मुबारकबाद ॾिनी।

ईरान ऐं इसराइल जे ॿिए ते हमला रोकण जो ऐलान ईरान ऐं इसराइल जे फ़ौज हमला रोकण जी तस्दीक करे छॾी। पाज़रान इनकलाब चयो आहे त भारत ते हमलनि जो भरपूर जवाब ॾिनो वेंदो। इसराइली उहिदेदार मूजिब सदर ट्रंप जी दरख़्वास्त ते ईरान ते हमला रोकिया आहिनि। लबनान में हिज़बुल्लाह ख़िलाफ़ कार्रवायूं जारी रहंदियूं। अमरीकी सदर ट्रंप ॿिन्ही मुल्कनि खां हमला रोकण जो मुतालबो कंदे चयो त ईरान सां मुआदे जे वेझो आहियूं, मुआदे खे ख़राब न कयो वञे।

0: समूरियूं धुरियूं साहब जो मुज़ारो कनि, हतमी मक़सदु हासिल करण जे वेझो आहियूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ चयो त विच ओभर में तशद्दुद में वाद अमन वारे मक़सद में देर जो कारण थी सघे थो। तकरार जे हल लाइ भाइरनि ऐं भाइवारनि सां ॻाल्हियूं हतमी मरेले में आहिनि। छाकाणि खां चिकटाण खां पासो कयो वञे। आज़ाद कश्मीर जे इलाके रावला कोट में गुज़िरियल ॾींहुं पुलिस अहलकारनि ते पाबंदी मंडल तंज़ीम जे तशद्दुद ऐं शहीद अहलकारनि जी हरमती करण वारी वीडियो साम्हूं अची वई। पाबंदी मंडल तंज़ीम ज्वाइंट एक्शन कमेटी जे माण्हुनि पुलिस ऐं कानून लागू करण इदारनि ते सिधियूं गोलियूं हलायूं। वीडियो में पुरतशद्दुद हमले ऐं शहीद पुलिस अहलकार जी लाश जी बेहुरमती थींदे ॾिसजी सघे थी। शर्मनाक अमल सां पाबंदी मंडल ज्वाइंट एक्शन कमेटी जे दहशतगर्द चेहरो ज़ाहिर थियो। भारतीय इंस्पायर्ड खारजी टीपी पाबंदी मंडल ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जे हक में पधाई भी जारी कई।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।

0: देखिए फरार इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज,
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

वो तमाम तो लोग जिन लोगों की आज सालगिरह है उनको कहेंगे मैंने मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे हैप्पी बर्थडे टू यू। इसके अलावा वो लोग जो कि बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून। जो लोग लाइक कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं बेस्ट ऑफ द बॉक्स आप लोगों के लिए कि आप अपने हर काम में कामयाब होते रहें। इसके अलावा जिन गलियों और चौबारों शहरों नदियों और पहाड़ों दरियाओं और मरगुजारों घरों बड़ी बड़ी कारों में यह गड़ रही है तमाम सुनने वालों को मोहब्बत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबन बेगम अहलन वसलन मरहबा बखेर आगनू सब बिस्मिल्लाह बाजार शाव निहा एंड वेलकम टू जिंदगी गुलजार है प्रोग्राम में हम कुछ है सुनने को सुनाने को समझने को समझाने खाने को बोलने को बुलवाने को और वो सारी बातें जो कि आप मुझसे करना चाहते हैं आपसे करूंगे। लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम का पहला गाना और इस प्रोग्राम में ये जो पहला गाना है ना सुनेंगे एंजॉय करेंगे एंजॉय करने के साथ साथ आगे ट्यून्ड।

टेलीविजन प्रोग्राम में आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं फिल्म के रिकॉर्ड से। आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं। सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में आई टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, सेंड कीजिए 888 1। परफॉर्मिंग करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है जो कि अब से कुछ देर बाद उसके ऊपर पोस्ट पब्लिश कर दी जाएगी, तो वहां से आप लोग मुझे ज्वाइन कर पाएंगे फेसबुक के थ्रू। इसके साथ साथ आप लोग मुझे कॉल कर पाएंगे। कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488, जिसके ऊपर कॉल की जा सकती है, जो कि आप लोग करेंगे। तो कॉल कीजिएगा और मेरा साथ दीजिएगा पूरे पूरे 1 बजे तक। और हम प्ले करने जा रहे हैं एक और सॉन्ग, और इस सॉन्ग के साथ हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ। तो आपने कहीं नहीं जाना, मेरा साथ देना है, क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान DFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अब आप तफरी से रिश्ता जोड़ो।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: करने के लिए हमारा फेसबुक पेज जिसके ऊपर आप आ सकते हैं, GGFM88 की पेज के ऊपर, ठीक है, GFM88 के पेज के ऊपर आने के बाद आपको मिलती है पोस्ट जिंदगी गुलजार है कि उसके नीचे आप लोग कॉमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं। कॉमेंट्स को ड्रॉप करने के साथ साथ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं जी, और इसके अलावा आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं 03000113488 इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं आप लोग मुझे। कॉल करने के बाद मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन करने के बाद मुझे एक अच्छा सा गाना सुना सकते हैं, ठीक है। सर लगाओ, गाना सुनाओ, हमारा सेगमेंट होने वाला है जिसका नाम है ओके फर्स्ट कॉलर ऑफ द सेगमेंट। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
1: आशिक हुसैन कौन बात करता हूँ?
0: आशिक हुसैन भाई कैसे, ठीक ठाक?
1: अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। कहाँ सुना, कैसे, ठीक ठाक है
0: जी? तबीयत ठीक ठाक है। और मुझे बताइएगा के प्रोग्राम सुन रहे हैं?
1: बहुत अच्छा चलता है आपकी आवाज़, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चलता है, जिंदगी गुजार।
0: चले जबरदस्त। अच्छा मुझे ये भी बताएं कि ये गाना सुनाएंगे?
1: हाँ जरूर सुनाएंगे, निकट मास की आवाज।
0: ओके सुनाएं प्लीज।
1: सर सजेनी हिंदी आंकुरु तो करवा का दे, मटका थे शक्कर का थे दादू। सर सजेनी हिंदी आंकुरु तो करवा का दे, मटका थे मोरो शक्कर।
0: ओके ये वाला हम गाना आपको सुनाते हैं, और मुझे बताएं और कुछ कहेंगे?
1: हाँ जरूर कुछ ये कहना चाहूंगा था, जिसमें सारे लोग सुनते होता है, पानी का लीम का इस्तेमाल करो, अभी गर्मी जितनी चलती है ना, अभी गर्मी बहुत ज्यादा है, और बच्चों का भी ख्याल करो, आपका भी ख्याल करो।
0: ओके जी, थैंक यू।

0: ओके जी, साथ साथ हम भाई का गाना प्ले करेंगे और गाने के साथ साथ कॉल्स ले लेंगे बहुत सारी. नेक्स्ट कॉलर ऑन द कॉल. हेलो.
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम.
0: वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैम सागर बात कर रहा हूँ.
0: सागर भाई, कैसे? ठीक ठाक.
1: खैरियत खैरियत, ठीक ठाक मैम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह.
0: कौन सा गाना सुनाएंगे आज आप हमें?
1: मैं भी ऐसे की गजल सुनाऊंगा मैम आज.
0: सुना
1: दीजिए.
0: ओके.
1: दुनिया किसे के प्यार में कनक से कम नहीं, एक देर बात है जो मेरे से कम नहीं. दुनिया किसे के प्यार में
0: कनक
1: से कम नहीं, उसने जहाँ चल रहे तुम्हारे
0: ओके. okay, जी थैंक यू सो मच. बहुत सारा ख्याल रखे सागर भाई अपना. ओके जी, अल्लाह हाफिज. ये गाना सुनेंगे हम, एंजॉय करेंगे और आगे चलेंगे.

0: बजिए सक्कर FM 88
1: सक्कर की आवाज।
2: शादी का इवेंट
3: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
5: It's 11:45 AM. This time check is brought to you by
6: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे। अस्करी बैंक।
2: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
7: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
8: सिंध के माथे का झूमर
9: GFM 88 नेटवर्क,
8: सिंध की आवाज़।

0: कौन सा प्रोग्राम है ये? जी वो शाम को चलता है।
1: जिंदगी गुलजार है।
0: हाँ ये जिंदगी गुलजार है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो के उठे आप?
1: जी
0: सो के उठे, इसलिए याद नहीं रह रहा?
1: नहीं नहीं ऐसी बात नहीं।
0: अच्छा ऐसी बात नहीं है, चलो फिर जैसी भी बात है मुझे एक अच्छा सा गाना सुना दें प्लीज।
1: हाँ जी मैं सुनाता हूँ। तो अच्छे बदली तेरा यार लिया, तेरे मुना दीवाना तेरा यार लिया, अच्छे बदली।
0: किसका गाना है ये? हेलो हेलो वसीम। ओके जी इन्होंने बताया नहीं, सो खैर कोई बात नहीं। 03000113488 इसके ऊपर कॉल कर रहे हैं आप लोग मुझे।

0: के जी ये तो म्यूजिक निकला, मैं समझी गाना है, लेकिन नेक्स्ट कॉलर हेलो।
1: अस्सलामुअलैकुम बाजी।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
1: अनुराग काली के लिए जंगल से कर रहे हैं बाजी।
0: ओके जी, तो मुझे पता है कि प्रोग्राम सुन रहे हैं।
1: बिल्कुल बाजी, बड़े शौक का काम बोल रहा हूँ।
0: ओके, फिर गाना सुना दे।
1: गानो बाजी सुना जाते तो वो बताएंगे सही।
0: हाँ जी, प्ले होगा आपका गाना।
1: समन है वो गानो बुदायो। हाँ तो थो समन है वो गानो बुदायो।
0: ओके, कौन सा गाना? कोई भी सुना दो। कोई भी गाना सुना दो।
1: हाँ गानो समन है वो कुछ बुदायो।
0: ओके जी, अल्लाह हाफिज। 03000113488। गाने की तरफ मूव करते हैं जी, और साथ साथ आप लोगों की बहुत सारी हम लाइव कॉल्स भी लेंगे। एंड हियर कम्स द सॉन्ग बाय नबील शौकत, सुनेंगे, एंजॉय करेंगे, आगे चलेंगे। स्टे ट्यून्ड।

ओके जी, आज का टंग ट्विस्टर जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ, एंड द टंग ट्विस्टर इज, साजिद ने सात सुइयां संभालकर संदूक में सजाई, साजिद ने सात सुइयां संभालकर संदूक में सजाई, ये कहना है। और इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। सो अगला जो हमारा सेगमेंट होगा अगले घंटे में, दैट इज बोलो तो माने, जिसमें एक अदर टंग ट्विस्टर आप लोग कह के दिखा रहे होंगे, बोल के दिखा रहे होंगे। सो उसमें फिर हम टंग ट्विस्टर खेलेंगे और आप कहेंगे टंग ट्विस्टर। सो इसी के साथ

आगे चलेंगे हम। और एक और गाना प्ले करेंगे और इस गाने के साथ जाएंगे हम न्यूज ब्रेक फॉलोड बाय कमर्शियल ब्रेक, दोनों के बाद वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, मेरा साथ देना है क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है।

0: एक्सप्रेस पी एम दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
1: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
3: कौमी इक़्तिसादी काउंसिल जो इजलास चों भेरो मुलतवी ज़रियन मौजिब कौमी इक़्तिसादी काउंसिल जो इजलास जो सुभाणे 11:30 बजे थींदो इजलास में PSTP समेत बजट जे अहम मामलनि जी मंज़ूरी डि॒नी वेंदी ज़रियन मौजिब वफ़ाक़ी हुकूमत सूबाई हुकूमतनि खे इजलास जे वक़्त बाबति आगाह करे छॾियो इजलास में चइनी सूबनि जा वॾा वज़ीर शिरकत कंदा बजट सुभाणे बदिरां 12 जून ते पेश करण जो इम्कान भारत पाबंदी मड़ियल टीटी ऐं BLA खे प्रॉक्सी तौर इस्तेमाल करे रहियो आहे गडि॒यल क़ौमनि में पाकिस्तान जे नुमाइंदे आसिम मुनीर आसिम इफ्तिखार जो अफ़ग़ानिस्तान जे सूरतहाल जे इजलास खे ख़िताब आसिम इफ्तिखार चयो त पाकिस्तान दहशतगर्द हमले में ख़ामोश नथो पणजी सघे सलामती आवाम जे तहफ़ुज़ लाइ जिते बि ज़रूरत पवंदी हक़ जी दिफ़ा तहत जवाब ॾींदासीं भारत अफ़ग़ानिस्तान जी मदद करण जी आड़ में पाकिस्तान में अदम इस्तक़ाम जी साज़िश में मुलिस आहे

अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त ईरान सां ॻाल्हियुनि में अघ भराई थी आहे। इसराइली वज़ीर आज़म खे ईरान ते हमिलो करण खां रोकियो हो, ॿिनि टिनि ॾींहनि में को मनसूबो साम्हूं अची सघे थो। लॻे थो ईरान मुआदे ते सहियूं करण में दिलचस्पी रखे थो। मुआदो थियण ताईं अपना हुर्म जी नाकाबंदी पूरी कुवत सां जारी रहंदी। ॻाल्हियुनि जी कामयाबी बाद तेल जूं क़ीमतूं तेज़ी सां घटिजी वेंदियूं।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
3: जीएफएम 91.6।

0: देख सीरियल जेंटलमैन हफ्ता और इतवार 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी है CAF 91.6।

0: Okay, जी, welcome back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजी रुखसार आपको मेरे साथ पूरी एक बजे तक का है हमारा सेगमेंट जिसका नाम है बोलो तो माने में एक अलग टंग ट्विस्टर जो कि आप लोग बोल के दिखाएंगे. आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं टंग ट्विस्टर बोलने के लिए या इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए 03000113488. इसके अलावा आप लोग मुझे सिंपली मैसेज भी कर सकते हैं. जी सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस कीजिए, मैसेज टाइप कीजिए और इसको सेंड कीजिए 888 पे. कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है GFM88 के पेज पे आपको मिलती है पोस्ट पब्लिश की गई उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं और मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है. और कॉल्स भी हम आप लोगों की लेना स्टार्ट करेंगे. इस सेगमेंट के फर्स्ट कॉलर हेलो ओके जी हेलो आवाज नहीं आ रही है हेलो ओके जी हेलो कॉल ड्रॉप हो चुकी है. ओके 03000113488 नेक्स्ट कॉलर हेलो ओके जी आवाज क्यों नहीं आ रही है. हेलो
1: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? कौन?
1: तूबा जी. हाउ आर यू?
0: तूबा कैसे? ठीक ठाक
1: माशाल्लाह. ठीक भी हूँ और नहीं भी.
0: ठीक भी है और नहीं भी है. चलें जितना नहीं है आप अल्लाह करे कि ठीक हो जाएं. ठीक है.
1: हाँ
0: अच्छा मुझे बताएं कि ये प्रोग्राम सुन रही है?
1: हाँ पर आज टंग ट्विस्टर का मिस हो गया.
0: टंग ट्विस्टर बोलेंगी?
1: नहीं सर मिस कैसे करते
0: मैं बताऊं?
1: हाँ एक बार बताऊं जी.
0: चले एक बार बताऊंगी. आपने कहना है कि साजिद ने 700 सुइयां संभाल कर संदूक में सजाई.

0: बहुत लंबा है,
1: बहुत लंबा है? नहीं नहीं लंबा नहीं है, इजी है। साजिद ने 700 सुइयां संभाल कर संदूक में सजाई।
0: साजिद ने 700 सुइयां संभाल कर संदूक में
1: सजाई।
0: सजाई,
1: यस।
0: साजिद ने 700 सुइयां संदूक में सजाई। साजिद ने 700
1: नहीं नहीं नहीं, नहीं साजिद ने 700 सुइयां संभाल कर संदूक में सजाई।
0: साजिद ने 700 सुइयां संभाल कर संदूक में सजाई।
1: यस।
0: साजिद ने 700 सुइयां संभाल के संदूक में सजाई।
1: यस।
0: साजिद ने 700 सुइयां संभाल के संदूक में डाल के सजाई। साजिद ने 700 सुइयां
1: संभाल के। ओके, काफी है, काफी है, काफी है। और कुछ कहेंगी?
0: हाँ, कनेक्ट हो गया,
1: टंग ट्विस्टर मिस हो गया। कोई बात नहीं, थैंक यू तूबा। कुछ और या मैं आगे चलूं?
0: मैं तो अपना बहुत, मैं अपना बहुत चलते अल्लाह।
1: ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। 0300-111-3488 आगे नेक्स्ट कॉलर। हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
2: हाफिज लखनी।
1: हाफिज लखनी भाई, कैसे? ठीक ठाक,
2: नमाज सुनाओ।
1: जी मैं भी बहुत अच्छी, मुझे बताइएगा कि टंग ट्विस्टर सुनाए, बोलेंगे?
2: जी बोलो, बताइए।
1: बोले
2: बताइए, रिपीट बोलेंगे।
1: साजिद ने 700 सुइयां संभाल कर संदूक में सजाई।
2: साजिद ने 700 सुइयां संभाल कर
1: ओके स्टॉप। और कुछ कहेंगे?
2: हमारे दोस्त से
1: जल्दी से
2: हाफिज बदरुद्दीन,
1: ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।

0: next caller. Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikum assalam. This is Ali. Kaise theek thaak?
1: Ji ji, alhamdulillah. Main kya hal hai aapke?
0: Ji, main bahut achhi hoon. Mujhe batayega ki aap program sun rahi hain?
1: Nahi gaana mam.
0: Nahi sun rahi. Tongue twister batao, bolengi?
1: Nahi gaana mam.
0: Bahut sad hai. Kyun sad hai?
1: Haan, wo main request kar rahi hoon sabko. Jo bhi meri awaaz sun rahe hain, meri mummy ke liye dua karein. मेरी मम्मी ठीक हो गया है, मेरी मम्मी की बहुत तबीयत हो रही है. सब जो भी सुन रहे हैं ना, मुझे सब आते हैं मेरी मम्मी के लिए दुआ करे. पर कहीं मनाती मेरी मम्मी के लिए दुआ करे, मेरी मम्मी ठीक हो जाए.
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी वालदा बहुत जल्द सेहतियाब हो जाएंगी. सब सुनने वाले जितनी भी सुन रहे हैं जरूर दुआ करेंगे. मेरी भी दुआएं आपके साथ हैं. आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना और अल्लाह पे यकीन रखना है. इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी अम्मी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी. ठीक है मिसेज? बिल्कुल जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अम्मी का भी ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. और मिसेस अली की वालदा जो कि उन्होंने बताया उनकी तबीयत खराब है, तो जितने भी लोग सुन रहे हैं काइंडली काइंडली दुआ करें. और हमें नहीं पता होता कि हमारी दुआ कब किसके लिए कबूल हो जाए, किसके हक में कबूल हो जाए. तो बिल्कुल दुआएं करनी चाहिए और दुआओं के लिए कहना चाहिए. क्या पता किसी की दुआ किसके हक में कब कबूल हो जाए. ठीक है, तो ये दुआओं के रंग होते हैं. ओके, नेक्स्ट कॉलर. हेलो.
2: वालेकुम.
0: वाह.

0: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
1: क्या हाल है, कैसे?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मुझे बताएं कौन और कहाँ से?
1: सर गुलाब निगाह इतनी शहर गाजी खान रिंद।
0: ओके जी, गाजी खान रिंद
1: जी जी।
0: टंग ट्विस्टर सुनाए, बोलेंगी?
1: हाँ जी
0: बोले।
1: साजिद ने सात पिया संभाल कर संतुम तुम सजाई, साजिद ने सात पिया संभाल कर सजाई, साजिद ने सात पिया संतुम तुम सजाई, साजिद ने सात पिया संभाल कर सजाई,
0: साजी संभाल कर संदूक सजाई। ओके जी, वेरी वेल डन। और कुछ कहना है? खैरियत है? ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। इसी के साथ हम चलेंगे एक अदर सॉन्ग की तरफ, और सॉन्ग मेरे पास मौजूद होगा बहुत ब्यूटीफुल, और ऐसे ब्यूटीफुल पूरे प्रोग्राम में सुनाती ही रहूंगी। तो हम प्ले करने जा रहे हैं रोमांटिक नंबर इन द सिंधी वर्जन, स्टे ट्यून्ड।

0: बी स्किन ब्यूटी क्रीम, इसमें मौजूद विटामिन ई बी और जदीद माइक्रोबीट फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ दो दिन में डव को करें फेस और देव कुदरती असली ग्लो। स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो। ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ, जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास। चेहरे के दाग धब्बे, खेल महासे और बेजानपन, अब सबको कहें अलविदा। बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम चेहरे की जल्द को दे नया निखार, नरमी, ताजगी और कुदरती चमक। सावली रंगत अब नहीं, सिर्फ 3 दिन में पाए साफ, निखरी और गोरी रंगत। लेकिन याद रखें, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से पहले बेस्ट लुक ब्यूटी सोप जरूर इस्तेमाल करें, ताकि असर हो दुगना। आज ही अपने करीबी कॉस्मेटिक जनरल एंड मेडिकल स्टोर से बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 0333-7896-343 एंड 0315-450-1092। बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जो नजर आए जो महसूस हो।
1: यार मछा क्या किथे वन्या, घर में बैठो यहाँ।

0: पर ठीक ही नया शायद मुझे जिंदगी लायक दवाई नहीं थी
1: जो भला साथ छुआ तो खे साथ साथ बुधा मसलो छाए
0: यार एक मसलो हुजे त बुधाया मुंजी ते मसलन जी कतार लगल आहे न भूख सही लगे थी अई जे कुछ भी खावा थो त हजम ही न थो थे पेट फूक जी वने थो हथ पेर सुन थी वनन था अई सजो डी सुस्ती।

Our good afternoon. Allah bless you with the best wishes. Take care. आपका शो बहुत जबरदस्त है. थैंक यू. आदिल हुसैन कहते हैं कि फर्स्ट टाइम आई हैव प्लेड अ सॉन्ग, गुड सॉन्ग. ओके, थैंक यू सो मच कि आपको मेरा प्ले किया हुआ गाना पसंद आया. बरकत रमजानी जमाली हमें सुन रहे हैं, मोहम्मद साली लगारी हमें सुन रहे हैं. थैंक यू. इसके अलावा हमें मैसेज रिसीव हुआ है सहर गुलाब लगारी से. शायर गाजी खान रिंद, रिजवान अली रिंद, फायजा अली रिंद, शहजाद अली रिंद, छोटी कोनेन जहरा. और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आपका शो सुन रहे हैं बाजी, आपकी कंपेयरिंग अच्छी है, शो शौक से सुनते हैं. ओके जी, थैंक यू सो मच कि आप शो शौक से सुनते हैं, ऐसे ही शौक से सुनते रहें, एंजॉय करते रहें. इसके अलावा कहानी में मजा नहीं आ रहा, नेक्स्ट प्ले करें क्या? नेक्स्ट प्ले करते हैं एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल. इसको सुनेंगे, एंजॉय करेंगे और आगे चलेंगे. स्टे ट्यून्ड.

0: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलादीप का अलादीप करंट अकाउंट, जिसमें मुझे फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो। अहमद, हटो वहां से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोए। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: खुशखबरी, आपके शहर सखर में 43 साल तजुर्बे कार
4: होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान,
3: DHMS सिंध,
4: RHMP इस्लामाबाद,
3: सीनियर प्रोफेसर होम्योपैथिक कॉलेज लाड़काना,
4: माहिर अमराज गुर्दे और मसाने की पथरी,
3: बवासीर का बगैर ऑपरेशन इलाज,
4: कमर दर्द,
3: अर्कुल हिस्सा,
4: जोड़ों का दर्द,
3: हेपेटाइटिस,
4: वजन की कमी या ज्यादती,
3: बे औलादी,
4: गंजपन का मुकम्मल इलाज
3: और दीगर मुख्तलिफ बीमारियों के माहिर होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान।
4: टाइम
3: हफ्ते से जुमेरात
4: सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक।
3: आगा होम्योपैथिक क्लिनिक,
4: पुलिस हेडक्वार्टर चौक सखर।
3: राब्ते के लिए
4: 03262200400।
3: खुशखबरी, खुशखबरी, अहां जे बारे जे बेहतरीन करियर आई रोशन मुस्तकबिल जे लाए सखर जो मशहूर आई मनियल इधारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज सखर पारा नर्सिंग आई फिजियोथेरेपी जे शोबन में नए सेशन लाए दाखिलाओं जो शानदार ऐलान। हाँ पैंजे बारे के बनायो हेल्थ करियर प्रोफेशनल 4 साल जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN, GBSM आई 5 साल DPD जने तो 2 साल जा डिप्लोमा प्रोग्राम LHV, CMW, ICNA आई खास गाल मुस्तहक शागिर्दन लाए स्कॉलरशिप्स पिण मौजूद आहिन जने ते 2 साल जे कोर्सेज में दाखिला बिल्कुल फ्री आहे। सहूलतों आई मनिता असां वट मौजूद आहे स्टेट ऑफ आर्ट कैंपस, AC क्लासरूम्स, जदीद लेबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल आई पिक एंड ड्रॉप जी सहूलत। ये इदारो सिंध हुकूमत जे हेल्थ डिपार्टमेंट का मंजूर थियल आई पाकिस्तान नर्सिंग एक्ट मिडवाइफरी काउंसिल का मुकम्मल तस्लीम थियल आहे। दाखिला महदूद आहिन, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। एड्रेस सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 5, सखर टाउनशिप, मेन बाईपास रोड, सखर। फोन नंबर्स 07156356429 03008311207।
5: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: आपके मेरे को मेरी आवाज सुनाई देती है।
1: ओके जी, थैंक यू सो मच, बहुत सारा ख्याल रखना। 03000113488। ओके, एक और लास्ट एंड लकी कॉलर। हेलो।
0: हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम।
1: वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है, कहाँ से?
0: मैम सागर बात कर रहा हूँ।
1: सागर भाई, आज की अच्छी बात क्या है?
0: तोबा है।
1: क्या है?
0: मैंने कहा तोबा है मैम, आज की जो साल मिलाना थे हाथी को रक्षा दुष्मा के बराबर है।
1: कॉल नहीं लग रही। दो बार तो लग गई आपकी, दूसरी बार लगी है ना?
0: दो लग, दूसरी बार लगी तो पहली बार आपने सॉन्ग गजल ही नहीं सुनाई मैम मेरे।
1: अच्छा, हाँ गजल नहीं सुनाई, देखे
0: बोल रहा हूँ हाथी को जो बच्चे के तरफ बैठ सिखाने में तरफ बराबर है।
1: चले, गजल आपको जरूर सुनाएंगे। मुझे बताएं आज की अच्छी बात।
0: आज की अच्छी बात क्या है? सब समझते हैं अच्छी बात क्या, किसको समझाना है?
1: सब समझते हैं अच्छी बात, किसी को नहीं समझानी, सबको पता है अच्छी बात।
0: ना ना, अच्छी बुरा में सब समझते हैं।
1: अच्छा बुरा मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अपना अच्छा बुरा सब लोग सब समझते हैं?
0: जी जी।
1: चलें, ये भी अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी। एंड मैं प्ले करने जा रही हूँ एक और सॉन्ग।

ओके जी ब्यूटीफुल सॉन्ग और सॉन्ग के साथ साथ आजकल जो हमारा टंग ट्विस्टर वाला सेगमेंट रहा है डायरेक्ट बोलो तो माने और बोलो तो माने में किसने आज टंग ट्विस्टर अच्छा अच्छा कह के दिखाया है उसमें हमारे पास दो विनर्स हैं जी जिन्होंने अच्छा अच्छा टंग ट्विस्टर कह के दिखाया है और उनमें से हैं जी एक तूबा तूबा ने अच्छा कहा है. इसके अलावा जी गाजी खान रिंद ने हमें बहुत अच्छा टंग ट्विस्टर कह के दिखाया. सो ये दोनों हैं आज के सेगमेंट के विनर और इसी के साथ हम फाइनली लेंगे आपसे इजाजत. इंशाल्लाह मेरी आपसे चिटचैट होगी शाम को 7 से लेकर 8 बजे तक और कल इसी प्रोग्राम में सेम टाइम सेम चैनल सेम शो द सेम आरजे से मत भूलिएगा. जिंदगी गुलजार है. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. दिस इज मी आरजे रुखसार साइंस आउट. टेक केयर. गुड बाय. अमान खुदा. अल्लाह हाफिज.

0: सचल की सरमस्त धरती,
1: फातिया मेहरान सिंध की एक और पहचान,
0: GAFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज़।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
3: Bankal Habib, Rishta Bharose Ka.
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN News.
5: वारे वजीर तारिक फजल चौधरी चावाद ने मारी साल जी बजट 12 जून जुमेवारे डी कौमी असेंबली में पेश कई वेंदी। नाणे वारे वजीर मोहम्मद औरंगजेब माली साल 2026-27 जी बजट पेश कंदो। सागे डी ते बजट सेनेट में भी पेश थींदी। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल जो इजलास टियों भेरो मुलतवी। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल जो हाणे इजलास सुभाणे थींदो। इजलास में PSDP समेत बजट जे अहम मामलनि जी मंज़ूरी डि॒नी वेंदी। ज़रियनि मूजिबि वफ़ाक़ी हुकूमत सूबाई हुकूमतनि खे इजलास जे वक़्त बाबति आगाह करे छडि॒यो। इजलास में चइनि सूबनि जा वॾा वज़ीर शिरकत कंदा। आज़ाद कश्मीर जो वज़ीर आज़म गिलगित बल्तिस्तान जो वॾो वज़ीर बि इजलास में शरीक थींदो। तरक़ियाती बजट जी मंज़ूरी डि॒नी वेंदी। भारत पाबंदी मड़ियल TTP ऐं BLA खे प्रॉक्सी तौर इस्तेमाल करे रहियो आहे। गडि॒यल क़ौमनि में पाकिस्तान जे नुमाइंदे आसिम इफ्तिखार जो अफ़ग़ानिस्तान सूरतहाल ते इजलास खे ख़िताब। आसिम इफ्तिखार चयो त भारत अफ़ग़ानिस्तान जी मदद करण जी आड़ में पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम जी साज़िश में मुलिस आहे। पाकिस्तान दहशतगर्दी हमलनि में ख़ामोश नथो रही सघे। क़ौमी सलामती ऐं आवाम जे तहफ़ुज़ लाइ जिथे बि ज़रूरत हूंदी जवाब ॾींदासीं। लबनानी फौज जे सरबराह जनरल रोडल्फ हेकल जी GHQ आमद फील्ड मार्शल सिदास मुनीर सां मुलाकात। गड़ियल दिलचस्पी वारनि मामलनि खिते जे तब्दील थींदड़ सूरतहाल दिफ़ाई सहकार ऐं फ़ौजी लाॻापनि खे वधीक खती ॾियण ते ॻाल्हि ॿोल। फील्ड मार्शल पारां लबनानी फौज सां दिफ़ाई सहकार खे वधीक खती ॾियण वारे अज़म जो वरझाओ। लबनानी फौज सरबराह पारां पाक फ़ौज जे पेशेवरान सलाहियतनि जी साराह खिते में अमुन इस्तेहकाम वारी कोशिशुनि ते भेटा पेश। ISPR मूजिब GHQ पहुचण ते लबनानी कमांडर इन चीफ खे पाकिस्तानी फ़ौज जे दस्ते गार्ड ऑफ ऑनर पेश कयो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।

0: एक चूंटी जितनी हैसियत है तुम्हारी, यूं मसल के फेंक भी दूंगा ना, कोई ढूंढ नहीं पाएगा तुम।
1: मम्मी, तुम्हारे भाई ने गुनाह किया। और
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो।

ओके जनाब, क्या बात है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड ई स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड ई स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इस्तेमाल कर रहे हैं और खूबसूरत होते जा रहे हैं। तो बिल्कुल भी जहां जहां तक अवेलेबल हो चुके हैं या फिर आप अवेलेबल कराना चाहते हैं तो मुझे बताएंगे कि कहां कहां पर अवेलेबल अभी तक नहीं हुए, या फिर आप चाहते हैं कि भाई हमारे एरिया में भी मिलने चाहिए, तो बिल्कुल आप बताएंगे। और इसी के साथ साथ यहां पर मैं आप लोगों को बताती हूं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए टॉपिक क्या लेकर आई हूं। तो आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक होने वाला है वो मुझे ये लगता है कि ये सवाल जो है ना वो मुझे आप लोगों से पूछना ही चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जैसे कि हम आजकल जो है ना वो मोबाइल के बगैर जो है हमारा जीना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है। थोड़ा सा क्या, मतलब बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो चुका है आजकल। हम तो ये समझ रहे हैं कि मोबाइल के बिना शायद जिंदगी जो है ना हमें अच्छी लगेगी भी या नहीं। तो मेरा ये आज आप लोगों से सवाल होने वाला है कि आप मुझे ये बताइए जरा कि आप लोगों से अगर आप लोगों का सेल फोन एक हफ्ते के लिए ले लिया जाए, यानी कि नो मोबाइल एक हफ्ते के लिए, तो आप मुझे बताएं कि उस एक हफ्ते के अंदर आप क्या कुछ करने वाले हैं विदाउट सेल फोन। ओके, तो आज के प्रोग्राम का बिल्कुल ये जो है ना वो सवाल ही टॉपिक है कि अगर आप लोगों से आप लोगों का जो फोन है ना, मोबाइल है ना, ये ले लिया जाए पूरे एक हफ्ते के लिए, तो उस एक हफ्ते में बिना फोन के आप कैसे सर्वाइव करेंगे, ये आज आप मुझे बताने वाले हैं। तो अगर आप हमारा शो सुन रहे हैं पहली मरतबा रोजाना, या फिर आप घुने वाले लिसनर्स हैं, यानी कि चोरी चोरी चुपके चुपके सुनने वाले लिसनर्स हैं, तो आप क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर ज्वाइन करने वाले हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा फेसबुक पेज है, आप आइए वहां पर आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है जिसे आप लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो जल्दी से पोस्ट को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए और बताइए कि आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। ओके जी, पोस्ट को ज्यादा वाली जो है ना वो लाइक और शेयरिंग दिया करें ताकि बहुत ज्यादा वाले लोगों को हम बता सकें कि मार्केट में आप लोगों के लिए कितने अच्छे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। तो जो लोग प्रोडक्ट्स को लेकर कंफ्यूज होते रहते ना कि हमने कौन सा प्रोडक्ट लगाना है, मार्केट जाते हैं तो जरा सी ये बात उन्हें समझ नहीं आती कि जो इतने सारे प्रोडक्ट उनको दिखाए जाते बताए जाते तो वो सारे प्रोडक्ट उनकी स्किन के हिसाब से नहीं होते। तो मैं आप लोगों को ये समझाती हूँ कि अगर आप मार्केट जाएं तो आप लोगों का जहन जो है ना वो क्लियर होना चाहिए, और आप अगर मार्केट जाएं तो आपने क्या परचेज करना है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों के पास मौजूद है, एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों के पास मौजूद है जो कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं और खूबसूरती को हमेशा के लिए लॉक करते जा रहे हैं। तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम आप लोगों के लिए है जनाब, व्हाइट एज ब्यूटी सोप आप लोगों के लिए है, व्हाइट एज फेस वॉश आप लोगों के लिए है, डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब आप लोगों के लिए है, व्हाइट एज लवली क्रीम आप लोगों के लिए है, और उसके अलावा जो है ना डी स्किन ब्यूटी क्रीम है और डी स्किन फेस वॉश है। ये तमाम प्रोडक्ट्स हैं जो कि इजीली आप लोगों को मार्केट से मिलने वाले हैं, तो बस आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर जाइए, वहां से मालूम लीजिए मिल रहे हैं नहीं मिल रहे मुझे बताइए, और अगर नहीं मिल रहे तो फिर आपने डायल करना है 03-15-799-0595। ये नंबर लाजमी डायल कीजिए ताकि आपके एरिया में, आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर, आपके गोट में, आपके सिटी में ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए। ठीक हो गया, 03-15-799-0595 ये नंबर याद रखिएगा। इसी के साथ साथ आज आप मुझे बताते जा रहे हैं कि आप लोगों ने फर्ज कर लेना है कि अगर आप लोगों से आप लोगों का मोबाइल फोन एक हफ्ते के लिए ले लिया जाए तो उस एक हफ्ते को आप किस तरह जो है ना वो गुजारने वाले हैं बिना मोबाइल फोन के, फर्ज कर लें जरा, अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या करेंगे आप एक हफ्ता। ओके, तो आप जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए, और जो लोग हमें ज्वाइन कर चुके उनमें हमारे साथ यहाँ पर आदिल हुसैन मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, खुश शाहीन जी जी सफा खुश ताम बताया कि आयो, कहते हैं कि सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं, बिल्कुल जी। और अब्दुल कपूर कैसर हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, आप हमें सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, आपको खुशामदीद कहते हैं। और उसके अलावा अब्दुल गफूर कैसर आ कहते हैं नाइस योर शो, थैंक यू वेरी मच। और हिदायतुल्लाह कहते हैं हमारे

अच्छा कहते हैं हमारे मोहल्ले में शादी हुई थी, अगले ही दिन बचा हुआ सालन खराब हो गया क्योंकि फ्रिज में रखना ही भूल गए थे। अस्सलाम वालेकुम, केड़ा हाल आहिनि सिदरा। आज ये सॉन्ग चलाते हैं असांजे करे लाड़कानो समझो इंग्लैंड थई। लिंक भेजू बिल्कुल जी, आप मुझे लिंक शेयर कीजिएगा। और वफा मीर मुनव्वर अली हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। और मौलाई मुजाहिद बोजार में सुन रहे हैं ठूप चूसल से, अस्सलाम वालेकुम सिडो जी, केड़ा हाल आहन, उम्मीद है तो बिल्कुल ठीक ठाक हुंदा। असां तव्हां खे शो में वेलकम था चऊं, असां भी तव्हां खे शो में वेलकम था चऊं। बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद। मोहम्मद ज़मान भाई आ चुके हैं, वेलकम मोहम्मद ज़मान भाई। और मोहम्मद अली खोसू हमें सुन रहे हैं मटियारी से, मोहम्मद अली खोसू भाई आपका भी वेलकम करते हैं। साजिद हुसैन सुमरो हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। और उसके अलावा अदनान नूर हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। कहते आर जे गोइंग वेरी वेल एनर्जेटिक स्टार्ट, बहुत शुक्रिया अदनान नूर, आप मौजूद है। और हिदायतुल्ला कहते हैं अदीश तूने नोट किया है कि तुम्हारा फ्रिज चलता तो है लेकिन घर से बाहर नहीं चलता। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती जो चलती तो हैं लेकिन वो घर से बाहर नहीं जाती तो टेंशन ना ले। और किशोर भाई कहते हैं कि हमें तो आदत है इंतजार करने की, तो तुम करवाती रहो हम करते रहेंगे। सलाम अदी, खुश आयो, यस माँ ठीक था बजायो, अज भला अदी चाहे तो वह खैर था। और कहते ओ नो ये क्या पूछ लिया आज, बिल्कुल जी मेरा दिल चाह रहा था मैं आप लोगों से ये वाला सवाल पूछ लूं। अशोक कुमार हमें सुन रहे हैं, अशोक कुमार भाई हेलो। एस एन आरबाणी वालेकुम अस्सलाम कहते ओ माय फेवरेट आरजे, आप कैसी हैं? लिखते हैं वेलकम टू द शो व्हाइट एश एंड जी स्किन ब्यूटी शो, आपको भी वेलकम करते हैं, खुश आमदीद। और मोलाई मुजाहिद बोजार कहते सिडो जी आज एक सॉन्ग प्ले करेंगे पाकिस्तानी मूवी का, ये दिल आपका हुआ सॉन्ग वो लड़की है या जादू। सिडो जी लाहूती साजन चांडियो भी आपका शो सुन रहा है। अच्छा यानी कि ठीक है जी, गाना आपने अच्छा बोला है तो लाजमी आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। और बहुत शुक्रिया, आप दोनों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है प्रोग्राम में। और इसी के साथ साथ टॉपिक को फॉलो करते रहिए कि अगर आप लोगों से एक हफ्ते के लिए आपका फोन सेल फोन मोबाइल ले लिया जाए तो एक हफ्ता आप कैसे गुजारने वाले हैं, क्या करेंगे बताएं मुझे जल्दी से। और साथ ही अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड दी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अपने एरिया में अवेलेबल कराना चाहते हैं, देन आपने डायल करना है 03-15-799-0595। डायल करते जाइए, खूबसूरत होती जाइए। यहाँ पर टाइम हुआ जाता है जरा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं। तो सुनते रहिए, इंजॉय कीजिए और हमारे साथ दीजिए। मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by
0: Heme Diamond Glow Bleach Cream. कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आए रोशन चेहरो Heme Diamond Glow Bleach Cream.
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: एक चूंटी जितनी हैसियत है तुम्हारी, यूं मसल के फेंक भी दूंगा ना कोई ढूंढ नहीं पाएगा तुम।
1: तुम्हारे भाई ने गुनाह किया और उसकी सजा उससे मिलकर रहेगी।

रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंकर हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिससे मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी,

आवाज़ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। आपके सदरा के साथ मौजूद है मेरे साथ जितनी भी खूबसूरत समाते हैं सबको वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आज मैंने आप लोगों से सवाल ही पूछ लिया कि आप मुझे बताएं कि फर्ज कर लें अगर आप लोगों से एक हफ्ते के लिए आपका मोबाइल फोन ले लिया जाए तो एक हफ्ता वो आप किस तरह गुजारेंगे, ये जरा आज आप मुझे बताने वाले हैं। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद है तो आप ज्वाइन करते जा रहे हैं कर दिया करें, और इसलिए शेयरिंग का कहती हूँ ताकि बहुत सारे लोग जो हैं वो जान सके और उनको पता होना चाहिए कि मार्केट में कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। तो अगर वो जाएं मार्केट तो उनके जहन में पता हो उनको कि भाई हमने क्या चीज परचेज करनी है, क्योंकि मैंने ये चीज नोटिस करी कि जब हम मार्केट जाते हैं ना और बहुत ज्यादा वाली चीजें देकर हमारी जो मतलब ऐसा ना हमारी सोच ये काम नहीं करती कि हम क्या लेने आए थे, हम क्या परचेज करके जा रहे हैं। तो अगर ऐसा सीन आपके साथ भी होता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब आप मार्केट जाएं तो सिर्फ आपने व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है और परचेज करना है। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे बताएं आपको रिजल्ट्स कैसे मिलते जा रहे हैं। बाकी जो अभी तक सोच रहे हैं तो भाई इतना मत सोचा करें, जेको तव्हां चाहियो था ना तव्हांजी खूबसूरती तव्हांखे मिली वञे, तव्हांजो हुसन तव्हांखे वापसि मिली वञे, तव्हां जल्दी जल्दी व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करण स्टार्ट करे वठो, ठीकु आहे।

से मोबाइल छीना था, बोले पढ़ाई पर ध्यान दो, मैंने घर के कुछ बर्तन तोड़े और फिर उसके बाद मोबाइल वापस मिल गया आपको। ये ट्रिक तो मेरे ख्याल में लड़कों का जो ना बड़ा वर्क करता है कि बस उनको थोड़ा गुस्सा आ जाए वो घर के बर्तन तोड़ने लग जाते हैं, तो ऐसा मत किया करें भाई। और न खा अलावा जिको आ कहते हैं गानो, हाँ गानो हलाएं तो ताजो थोड़ा सबर करना करो, दर्द दिल हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। और न खा अलावा वासु भाई कहते अदी सिडो जवाब माँ पैंजन कबूतरन सा हफ्तो गुजारे वेंदस, उन्हनि खे उॾारण ऐं दाणो ॾियण में उन्हनि सां टाइम पास थी वेंदो आहे। इहा बि ॻाल्हि आहे, कबूतर ऐं माण्हू अलॻि ई दुनिया जा माण्हू हूंदा आहिनि। सही आहे बाबा, सही आहे, इंजॉय कयो पंहिंजी ज़िंदगी। और नज़ीर खोसो में सुन रही है बलोचन सांस से, भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, वेलकम। और शहबाज भी हमारे साथ मौजूद है, हेलो। अच्छा पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए। अच्छा उन खां अलावा हेंजी दर्दे दिल कहते हैं कि रास्ते कभी खत्म नहीं होते, लोग हिम्मत हार जाते हैं, अगर आज मुश्किल वक्त है तो याद रखो सूरज भी हर रात के बाद तुलू होता है, अपने ख्वाबों पर यकीन रखो क्योंकि नामुमकिन सिर्फ उस वक्त तक होता है जब तक कोई उसे मुमकिन ना बना दे। बिल्कुल जी।

फेस वॉश भी आहे, एक्नी ट्यूब भी आहे, अञा बियो छा खपेव? जेके जेके माण्हू आहिनि अलॻि अलॻि मसलनि सां फेस कनि पिया, उन्हनि जे चेहरे ते अलॻि अलॻि मसला आहिनि, जीअं तव्हांजे चेहरे ते दाणा आहिनि, या फिर तव्हांखे का सुठी नाइट क्रीम नथी मिले, तव्हांखे का फेयरनेस क्रीम नथी सुठी सूट करे, त बाबा तव्हांजे लाइ वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हर तरह जो प्रोडक्ट खणी आयो आहे। सो वाइट एश ब्यूटी क्रीम जी अगरि असां ॻाल्हि कयूं त वाइट एश ब्यूटी क्रीम जेका एवोकाडो, एलोवेरा ऐं मिल्क सां तयारु कई वई आहे, हीअ टई चीज़ूं हुन जे अंदरि एड कयूं अथसि, तॾहिं वाइट एश ब्यूटी क्रीम तयारु थी आहे। ऐं वाइट एश ब्यूटी क्रीम जेका तव्हांजी स्किन खे फ्रेश बणाईंदी आहे, फेयर बणाईंदी आहे, क्लियर बणाईंदी आहे, सोनो बणाईंदी आहे। सो मर्द हज़रात हुजनि या ख़वातीन, तव्हां ॿई इस्तेमाल करे सघो था। उन खां अलावा जेके माण्हू दाणनि जी वजह सां परेशान आहे, शदीद वारो परेशान आहे, त तव्हांजे लाइ डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब तयारु कयो आहे। डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जेको आहे, ही बाबा ॾाढो ज़बरदस्त ट्यूब अथव उन्हनि माण्हुनि जे लाइ, ख़ासि करे जेके पंहिंजे चेहरे जे दाणनि जी वजह सां परेशान आहे। त अगरि तव्हां बि एक्नी खे ख़तम करणु चाहियो था, त डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब तव्हांजे लाइ मौजूदु आहे। आयुर्वेदिक फार्मूलो आहे जनाब, ऐं तव्हांजे एक्नी सां फाइट कंदो आहे। तव्हांजे एक्नी खां अलावा तव्हांजा निशान आहिनि जेके फेस ते, उहे ख़तम थींदा आहिनि। तव्हांजे चेहरे ते कोई कट जो निशान आहे, कोई सड़न जो निशान आहे, कोई केतिरो पुराणो निशान आहे जेके तव्हां रिमूव करणु चाहियो था, त तव्हां बिल्कुल डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो इस्तेमाल करे उन खां छुटकारो हासिल करे सघो था। उन खां अलावा इस्तेमाल करण जा तरीक़ेकार बि ॿुधायां थी, पर पहिरियां सभु प्रोडक्ट जे बारे में त ॿुधी वठो। ऐं तव्हांजे लाइ वाइट एश ब्यूटी सोप बि मौजूदु आहे, वाइट एश जो फेस वॉश बि मौजूदु आहे। सोप जेका उहो एलोवेरा, एवोकाडो ऐं मिल्क सां तयारु कयो वियो आहे, बाक़ी जेको फेस वॉश आहे उन जे अंदरि वाइटमिन सी मौजूदु आहे। ठीकु आहे, इहो इन्हनि ॿिन्हिनि में डिफरेंस आहे। उन खां अलावा अगरि तव्हां सोप लॻाईंदा आहियो त सोप लॻाईंदा, अगरि तव्हां फेस वॉश लॻाईंदा त तव्हां फेस वॉश लॻाईंदा इज़ी। ऐं अगरि तव्हां वाइट एश लवली क्रीम जे बारे में नथा ॼाणो, त तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त वाइट एश लवली क्रीम हिकु उहा वाहिद क्रीम आहे जेका फेयरनेस क्रीम सां गॾो गॾु हिन जे अंदरि सनस्क्रीन बि एड कई वई आहे। यानी कि हिन में ॾिसो था तव्हांजे लाइ केॾो मतिलबु हिननि फ़ाइदो सोचियो आहे। त जेके बि असांजा सोणा सोणा लिसनर असांखे ॿुधनि पिया, जेके जेके सोणा माण्हू पंहिंजी ख़ूबसूरती जो ख़्यालु रखणु चाहिनि था, त हुन जे लाइ बिल्कुलु उन ई तरीक़े जो प्रोडक्ट हुजणु लाज़मी आहे। सो अगरि तव्हां बि वाइट एश लवली क्रीम जो इस्तेमालु करणु चाहियो था, त तव्हांखे इहा ख़बर हुजे त बाबा वाइट एश लवली क्रीम जेका आहे, हीअ हिकड़ी फेयरनेस क्रीम आहे, पर सिर्फ़ फेयरनेस क्रीम न आहे, हिन जे अंदरि अहिड़ियूं चीज़ूं एड थियल आहिनि जेका रेडियंट अल्ट्रा वाइटमिन सां तयारु कई वई आहे, जंहिं अंदरि 30 वाइटमिन जा कैप्सूल एड आहिनि। 30 वाइटमिन जा कैप्सूल, यानी कि तव्हांजी स्किन ते कोई बि वाइटमिन जी कमी आहे त उहा पूरी थी वेंदी जॾहिं तव्हां वाइट एश लवली क्रीम जो इस्तेमालु कंदा। हिन जे अंदरि वाइटमिन डी आहे, वाइटमिन ई आहे, वाइटमिन सी आहे, वाइटमिन B3 आहे। उन खां अलावा सनस्क्रीन बि एड अथसि, जीअं तव्हांखे अलॻि सां सनस्क्रीन लॻाइणो न पवे। अहिड़ी गर्मी जे मौसम में तव्हांजी स्किन ते सनस्क्रीन बि लाज़मी ज़रूरी हूंदो आहे। अगरि तव्हां सनस्क्रीन नथा वठो या फिर नथा इस्तेमालु कयो, त तव्हांखे टेंशन वठण जी ज़रूरत न आहे, तव्हां वाइट एश लवली क्रीम लॻाए सघो था। वाइट एश लवली क्रीम तव्हांजी स्किन ते ग्लो बि ॾींदी ऐं तव्हांजी स्किन खे प्रोटेक्ट बि कंदी उन सिज जे असरात खां, जेके सिज जा असरात तव्हांजे चेहरे खे नुक़सान पहुचाईंदा आहिनि, समझो था। सो वाइट एश लवली क्रीम तव्हां ॾींहं जो लॻाए सघो था, राति जो लॻाए सघो था, नंढा ॿार हुजनि, वॾियूं मायूं हुजनि, मर्द हुजनि, कुराड़ा आहियो तव्हां सभु हणी सघो था, छो त वाइट एश लवली क्रीम जेका आहे न, एतिरी ज़बरदस्त क्रीम आहे जेका तव्हांखे मज़ो ॾेई छॾींदी। So वाइट एश लवली क्रीम तव्हां लॻायो ऐं तव्हांजी ख़ूबसूरती सफ़ाई चमकंदी वधंदी। उन खां अलावा ॿियो छा आहे, उन खां अलावा सोप ऐं फेस वॉश जी अगरि ॻाल्हि कयूं त उहो बि ऑल स्किन टाइप जे लाइ तव्हां बिल्कुलु हर कोई इस्तेमालु करे सघे थो। ऐं बाक़ी हा, लॻाइण जा तरीक़ेकार छा आहे, त बिल्कुलु लॻाइण जा तरीक़ेकार इहे ई आहिनि त अगरि तव्हां वाइट एश ब्यूटी क्रीम इस्तेमालु कयो था, त वाइट एश जी ब्यूटी क्रीम तव्हां राति टाइम इस्तेमालु करे सघो था, छो त हिकिड़ी नाइट क्रीम आहे। राति टाइम तव्हां इस्तेमालु कयो, उन खां अलावा फेस वॉश तव्हां पहिरियां लाज़मी कजो। फेस वॉश करे उन खां पोइ तव्हां वाइट एश ब्यूटी क्रीम अप्लाई करे सघो था। ऐं उन खां अलावा अगरि तव्हां डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब लॻाइण चाहियो था तव्हांजे चेहरे ते दाणा आहिनि उन्हनि खे ख़तम करण जे लाइ, त तव्हां डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब राति टाइम इस्तेमालु कयो। उन खां अलावा तव्हां फेस वॉश लाज़मी कंदा कयो, कोई बि प्रोडक्ट तव्हां लॻायो था, तव्हां वाइट एश लवली क्रीम हणो था या डॉक्टर पिंपल ट्यूब हणो था या वाइट एश ब्यूटी क्रीम हणो था, इन्हनि खे इस्तेमालु करण खां पहिरियां तव्हांखे पंहिंजो मुंहुं लाज़मी धोइणो आहे। सही आहे, तव्हां पंहिंजो मुंहुं धो, पंहिंजे फेस खे सफ़ा क्लीन कयो, क्लियर कयो, उन खां पोइ तव्हां प्रोडक्ट अप्लाई कयो पंहिंजी स्किन ते, तॾहिं ई जेको प्रोडक्ट आहे उहो तव्हांखे सही तरीक़े सां रिज़ल्ट ॾींदो आहे। सो प्रोडक्ट खे सही तरीक़े सां इस्तेमालु अगरि तव्हां कंदा त तव्हांखे बिल्कुलु सुठो रिज़ल्ट मिलंदो आहे। सो सुठे रिज़ल्ट हासिल करण लाइ तव्हांखे सही तरीक़े सां इस्तेमालु करणा पवंदा। सो बिल्कुलु तव्हां इस्तेमालु कंदा हलो ऐं पंहिंजे ख़ूबसूरती खे वधाईंदा हलो, ऐं बिल्कुलु तव्हां बि हसीन ऐं प्यारा थियणु चाहींदा हूंदा। सो तव्हां वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमालु करे सघो था। तव्हांजे एरिया में, तव्हांजे ॻोठ में, तव्हांजी सिटी में नथा मिलनि, त पोइ तव्हां डायल कयो 03-15-799-0595। ओके जी, डायल कीजिए हिकु नंबर और साथ साथ हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए। और जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा है उसका जवाब भी देते जाइए। तो आज मैंने आप लोगों से सवाल पूछा है कि आप मुझे बताते जा रहे हैं कि अगर फर्ज कर लें आप लोगों से, आप

प्रोग्राम व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. लगाते जाइए, खूबसूरत होते जाइए. अच्छा, ये हमारे साथ मौजूद है आरजे सिद्रा. आपकी खातिर मेरी आपी और भाभी व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम सोप के साथ इस्तेमाल कर रही है और मैं खुद व्हाइट एश लवली क्रीम लगाता हूँ और मेरा भाई सिर्फ डी स्किन का फेस वॉश लगाता है. और जी, ये हमारे साथ मौजूद है इमरान अली बिरोही फ्रॉम लाड़काना. इमरान भाई, क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का. और उसके अलावा हैं जी, ये कहते हैं बाजी टॉपिक का जवाब है, मैं पूरा हफ्ता सो जाऊंगा. पूरा हफ्ता कैसे सोएंगे, इतनी नींद आती नहीं है. और इमरान अली बिरोही भाई हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया. फकीर मोहम्मद हमारे साथ है, पाक आर्मी पनो आकिल से कहते हैं सिस्टर की आवाज बहुत प्यारी है और आप टैलेंटेड भी बहुत है, माशाल्लाह खुश रहें. थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया. मीरपुर खास अब्दुल्ला महर, अस्सलाम वालेकुम. बाजी टॉपिक है, मोबाइल के बिना एक हफ्ता क्या एक मिनट भी नहीं रह सकता. अब आगे जियो करें, हाजिर साइन जियो तक आयो. और ये हमारे साथ एक कौशल कहती है, जन्नत आप कैसी हैं? आपकी जन्नत बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताएं कौशल आप कैसी हैं? और कहती हैं, वो तो मैंने बताया था ना, ये आपकी गलती है कि आप शो सही से सुनती नहीं है. और उसके अलावा क्या कहती हैं, आपका शो बहुत बहुत अच्छा है. थैंक यू सो मच मेरी प्यारी. इरम कहती है अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी दिलबर दोस्त. कल चले फिर आपने साइलेंट होकर शो सुना, फिर बताएं आपको कैसे लगा. अच्छा, जो लोग शो में शामिल होते हैं फिर वो अगर साइलेंट होकर शो सुने तो फिर थोड़ी कैफियत अलग सी होती है कि उनको ये चीज जो ना मजा नहीं देती कि भाई हमें तो मैसेज करना चाहिए, मुझे ये लगता है. और ये कौशल कहती है कि जन्नत अगर आपसे ले लिया जाए फोन तो आप क्या करेंगे? मेरे पास बहुत सारी एक्टिविटीज है, मैं बहुत कुछ कर लेती हूँ. मैं वैसे ही फोन जो है ना वो कम यूज करती हूँ. अच्छा, साइमा मीर हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम. माशाल्लाह मैं बेस्ट आरजे सिद्रो, आप कैसी हूँ? आपका शो मस्त है जैसे. ठीक है. और कहती टॉपिक भले ले जाओ, मैं तो चली जाऊंगी अपने गांव. हाँ भाई, गांव में वाकई लोग बड़ा एंजॉय करते हैं. इरम कहती दिलबर आप ही आपकी कल से मेरी तबीयत वागे थोड़ी सी अजीब हो गई है, थोड़ी सी तबीयत जो है ना वो ठीक नहीं है, गला खराब हो गया है मेरा और मुझे जुकाम हो गया है, तो ये कल से है सूरत हाल. आप दुआ कीजिएगा जल्दी से ठीक हो जाओ. और नखा अलावा जेको आता जेकी मानो असा के फेसबुक ते बुद्ध पया बाबा पोस्ट के लाइक एंड शेयर कंदा हलो और तमाजी शेयरिंग मुखे थोड़ी कम नजर अचे पई, ई छू कंदा आयो. अच्छा, शेला गुल जो गानो हलायो थम, मैं शेला गुल जे गाने हलाने सा गड असा के लुबना नजर अच्छी वही. लुबना कहती है अस्सलाम वालेकुम सिडो जानी, क्या हाल है? मैं भी आपके साथ साथ हूँ. ओके जी, आप हमारे साथ साथ हैं और क्या कहती हैं? नाइस शो एंड नाइस सॉन्ग शेला गुल का. हाँ बिल्कुल, मुझे अंदाजा था कि शेला का गाना सुनकर आप जरूर आएंगे.

हां जी वठी तू अचे वठी तू अचे सबर कर समंदर गांगरू हमारे साथ समंदर भाई कहते हैं हाय आरजे एंजल सिड आप कैसी हैं नजीर अहमद गांगरू हमारे साथ हैं ओके जी वेलकम वेलकम और आदिल कहते हैं कि जेकडे मुझो मोबाइल एक हफ्ते लाए वठी वने कोई तमा आईने सा सेल्फी कडन दिस पोए समझ में इंदी अपलोड कंदा सी कडे अपलोड कदो जदी आईने सा सेल्फी कडना तो अपलोड के थी आई तो हर 5 मिनट बाद किसे में हाथ हणंदस मोबाइल न मिलंदो त पंजो कन सिकिंदस अमर के चवंदस मुजो दिमाग हैंग थी वयो आहे वी स्टार्ट जो बटन काडा आहे किथे आहे अच्छा आई पाड़े जे बारन खा पुछंदस भाऊ वाईफाई जो पासवर्ड होए चवंदा चाचा असा वट भी नेट नाहे हफ्तो पूरो थिंदो त मोबाइल के इए भाकुर पाइंदस जी गुम थेल प्यारो वापस मिली वेंदो हुजे अच्छा ये तो बड़ी भाई आपने अच्छी अच्छी बातें शेयर कर दी अगर वाकई सेल फोन हमसे ले लिया जाए तो शायद कुछ लोगों की कैफियत ऐसी हो सकती है हाँ जी बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं ओके जी हसन कहते हैं टॉपिक भले दह दिया मोबाइल खसे छड़ने पर वाई कोने हाँ कुछ मानो इड़ा भी हुंदा है अच्छा वासु भाई कहते अदि सिडो गाल तई सिद्धी मां सिर्फ वाइटेश वारन जो साबुन वट्स वॉश उठो पर वठो तो सही ना एकड़ी शी इस्तेमाल करना तांगे खबर पंदी त बाबा वाकई प्रोडक्ट में दम आहे सो तमा लाजमी वठो इस्तेमाल कयो उनका अलावा दर्द दिल कहती टॉपिक चंदा क्या करती मैं ये तो कभी सोचा ही नहीं तो आज सोच लेना आप सोच कर मुझे बताएंगे अगर एक हफ्ता आप लोगों से फोन ले लिया जाए तो वो एक हफ्ता आप कैसे गुजारने वाले क्या कुछ करेंगे जल्दी से बताएं प्रोग्राम कैसे बनते जाएंगे यहां पर टाइम हो जाता है कि हम न्यूज ब्रेक और शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाएंगे उसके बाद जल्दी वापसी आप लोगों के पास आते हैं तो सुनते रहिए एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूं आप सुन रहे एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते जाइए खूबसूरत होते जाइए

0: वतन की मोहब्बत।
1: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
2: GFM 91.6।
3: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
4: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
5: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

सेनी कमांडर इन चीफ के दस्ते गार्ड ऑफ ऑनर पेश कयो। सुठो मुआदो थियण जे लाइ पुरउमीद। वॉशिंगटन साफ़िन सां ॻाल्हाईंदे सदर ट्रम्प चयो त विच ओभर में अमन मुआदे वारियूं कोशिशूं आख़िरी मरहले में आहिनि। ॿिनि कंट्रीनि ॾींहनि में सुठो मुआदो थी सघे थो। ईरान जी नाकाबंदी बरक़रार आहे। तेहरान तेल वेकिरो नथो करे सघे। ॻाल्हियूं जंग जो हिसो आहिनि। अमरीकी सदर जे ॻाल्हियुनि में संजीदगी नज़र आई त ॻाल्हियुनि ते को बि एतराज़ न हूंदो। ईरान जी क़ौमी सलामती बाबति सलाहकार इब्राहिम अज़ीज़ी चयो आहे त ॻाल्हियुनि में मज़म्मती महाज़ ऐं लबनान वारे मामले तां पोइते न हटंदो। अमरीका एतबार जोगो नाहे। लबनान ते अॻुभराई थी त ॻाल्हियूं अॻिते वधी सघनि थियूं। गॾियल क़ौमनि में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरवानी चयो आहे त अमरीका सां मुआदो खे हतमी शकल ॾियण लाइ पाकिस्तान ज़रिए ॻाल्हियूं जारी आहिनि। जंगबंदी जे मसूदे में लबनान समेत सभई इलाका शामिल कया वेंदा। अञा ताईं को बि मुआदो न थियो आहे पर कोशिशूं जारी आहिनि। अबनै हुर्मज़ वेझो अमरीकी गनशिप हेलीकॉप्टर किरी तबाह। ॿई पायलट महफ़ूज़ रहिया। सदर ट्रम्प अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर किरी तबाह थियण जी तसदीक कंदे चयो आहे ट्रांसपोर्टर

सीनियर वज़ीर सर्जरी ना मेमेंट सदारत हेठ ट्रांसपोर्ट खाते जो इजलास थो ट्रांसपोर्टर्स लाइ वन विंडो सहूलत कायम करण जो फैसलो सर्जरी ना मेमेंट चो तो कदम जो मकसद 30 जून 2026 तक कमर्शियल गाड़ियों के डिजिटल ए ऑटोमेशन निजाम में तब्दील करण है। सिंध हुकूमत अवामी खिदमत में ट्रांसपोर्ट शोबे में मुकम्मल डिजिटाइजेशन के नजरिए कम कर रही है।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
2: वादिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान।

0: रहिए मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: Lots of fun, loads of only one GA Radio Mutiara.

ओवर जी वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास नटियारी सकरण मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं। व्हाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया जिनके बारे में जानकर आप लोगों को समझ आ गई कि व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों की खूबसूरती के लिए कितने ज्यादा स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में भी। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर डी स्किन फेस वॉश हो इनके क्या फायदे हैं और इनको आप किस तरीके का इस्तेमाल करने वाले ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। और इसी के साथ जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं तो लोगों को ना वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। ओके जी सो आप लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। बिल्कुल आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और इसी के साथ साथ मैंने आज आप लोगों से सवाल ये पूछ लिया है कि आप मुझे बता रहे हैं कि अगर आप फर्ज करें एक हफ्ते के लिए आप लोगों से आप लोगों का सेल फोन ले लिया जाए तो वो एक हफ्ता आप किस तरह से गुजारने वाले हैं, क्या कुछ करेंगे? ठीक है ओके जी जल्दी से बताइए। और इसी के साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद हैं, मुझे बताते जाइए। फेसबुक पर ज्वाइन करते जा रहे हैं, 8821 पर ज्वाइन करते जा रहे हैं और रेहान अली हमें सुन रहे हैं, कह रहे गुड शो, थैंक यू वेरी मच। रियाज भट्टी हमें सुन रहे हैं फ्रॉम लाहौर, ये थे असलाम अलैकुम जी। वालेकुम असलाम, खुश आमदीद कहते हैं आपको भी।

थोड़ा साइड पे रखा करिए और अपना जो ना इस मोबाइल फोन के आदि मत बन जाए इतने कि आप लोगों को इबादत करना कर लिए भी ना ऐसा हो कि भाई मोबाइल ले लें तब मैं करूंगा, ये बहुत गलत बात है। एम अंसारी कहते हैं कि टॉपिक पर कहूंगा कि अगर किसी ने सेल फोन ले लिया तो वो हॉस्पिटल में बेड भी बुक करवा दे अपना। चलें क्या बात है, इतने खतरनाक है आप माशाल्लाह जी। और आप मुझे ये बताएं कि आपके यहाँ डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है नहीं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आपके एरिया में मिलेगी जबी तो जाकर आप परचेज करेंगे ना। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम की अगर बात की जाए तो जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहले जान लें कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के फायदे कितने ज्यादा हैं। तो हम जाने लगे हैं कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया गया है जो कि फुल डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया गया है। इसके अंदर जो है ना वो तमाम चीजें एड की गई है जो कि एक अच्छे वाले प्रोडक्ट के अंदर होनी चाहिए। और जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को ये एहसास होता है कि वाकई आप कुछ अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की बात हो तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज भी पहले से पता होनी चाहिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों के ऑल स्किन टाइप के लिए है। अगर आप लड़के हैं लड़कियां हैं सबको ये इस्तेमाल कर सकता है। एक और मजे की बात कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट फॉर्मुलेशन के साथ जो है ना वो तैयार की गई है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी जिल्द की खूबसूरती और हिफाजत के जनाब एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी क्रीम साबित होने वाली है। और इसी के साथ साथ ये आपकी जिल्द की जो है ना वो आपकी जिल्द आकर आप लोग बहाल करती है, को नमी फराहम करती है और नरम और मुलायम बनकर ताजा रखने में मदद देती है। और अगर आप इस्तेमाल करते हैं बाकायदा डी स्किन ब्यूटी क्रीम का तो आपकी जल्द जो है वो बेरोनकी अगर आपकी जल्द में आ चुकी है बहुत ज्यादा तो वो कम हो जाती है, आपका चेहरा ज्यादा रोशन और साफ नजर आता है। और उसके अंदर जो है ना जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर जो ये विटामिन ई बीट्स शामिल किए गए हैं और ये जो माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन तैयार किया गया है तो ये बहुत ही एक अच्छा फार्मूला है जो कि आप लोगों को हर किसी को लगाना चाहिए, खास करके उन लोगों को लगाना चाहिए जिनकी स्किन के ऊपर जो है ना कोई प्रोडक्ट जल्दी में सूट नहीं करता। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनकी स्किन के ऊपर ना कोई भी प्रोडक्ट जल्दी में सूट नहीं करता। तो बिल्कुल ये जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों की स्किन जो है वो वाकई ऐसा महसूस करेगी कि हमारी स्किन के लिए भी कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल किया गया है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप मर्द हजरात हैं या फिर खवातीन हैं दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश मिल रहा है। स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं

ओके जी, एम अंसारी कहते हैं यूप अवेलेबल ऑन एवरी शॉप इन नवाब शाह, मुझे फ्री में दिलवाए ना। अच्छा चले, मैं कोशिश करूंगी कि आपको फ्री में मिल जाए, ठीक है। और कहते हैं मुझे भी गोरा चिट्टा होना है प्लीज। मूला पारत करायो वाइट एश आई डी स्किन वारन के कसम अथव मासी चपरान जो, न न मासी चपरान जो कसम न जो। खैर तवां जे लाइ जेको आहे न असां अवेलेबल कराए छॾी आहे, त हाणे तव्हांखे जेको आहे न फ्री में बि ॾियाराईंदासीं, टेंशन न वठो। बसि तव्हां जेको आहे त चिटे थियण जे लाइ थोरो महिनत कंदा कयो, ऐं तव्हांखे इहा चीज़ ख़बर हुजणु घुरिजे त मार्केट में कहिड़ा कहिड़ा प्रोडक्ट्स अवेलेबल आहिनि, ऐं कहिड़ा कहिड़ा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हुजण सां गॾु उहे तव्हांजी स्किन जे लाइ ज़रूरी आहिनि। यादि त डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगरि तव्हांजे एरिया में मिलनि था त बिल्कुलु तव्हांखे ॾियारींदासीं। तव्हांजे लाइ गिफ्टिंग वारो सिस्टम स्टार्ट कंदासीं, पर थोरो टाइम गुज़रण ॾियो।

बिल्कुल बाबा, ब्रांड आडी स्किन प्यूरी क्रीम तवा लाज़मी लगाए जो उनका अलावा तां एरिया में नथो मिले त नंबर जको ना लाज़मी डायल करना कयो नंबर आ 03 1579 0595 नंबर ते राबतो तवा कयो जी तवा जे एरिया में अवेलेबल।

इतफ़ाक कहते हैं कि सिदरा लाहौर में कड़े दुकान था मिलंदा प्रोडक्ट लाहौर में तुम मालूम वो ना मिलन तो मुख्य बुधा किथे किथे अवेलेबल ना तो अवेलेबल कराइंदा अच्छा ऐसन कहते हैं पर तुम शो न कर तो असा की मोबाइल की जरूरत ना अच्छा मानी अगर असा शो क्यों था तरी तुम मोबाइल जो इस्तेमाल कर पाया चलो यह भी सुठी गाल भी असानी कामयाबी अच्छा ये अशफाक क्या कहते हैं चलें ठीक है और रिहाना खान बखर से हमारे साथ मौजूद है रिहाना आपको वेलकम करते हैं और अनवर भाई भी हमारे साथ मौजूद है अनवर भाई तुम जो मोहब्बतों प्रोग्राम बुधो पे टॉपिक चौथा बो मसलो ना है पर तुम जो प्रोग्राम एफ बी ती बुधंदस हाँ वाकई यह सोचने वाली गाल ए एम अंसारी कहते हैं कि वेटिंग कंदे मां ब्लैक थी वेंदस छो तो कड़ी कड़ी मानुन की वेटिंग जो फायदो मिलंदो आए सो वेटिंग करण भी सुठी गाल है आई तमा जेको ना नंबर ते राबतो करे वठो ठीक है अच्छा कुछ डी पैं एक गाल थी हुई उसे शेयर कदस पर डिठो वे तो टाइम थो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो यह गाल मुखे वेठी वेठी याद अची वे जडे एम चयो तो मुखे फ्री में गिफ्ट दियारा तदे इन गाल ते जो मुखे गाल याद अची वे मैं बुधाया थी थोड़ो सबर कर पोस्ट के तुम लाइक एंड शेयर क्या हलो मुख्य बुधा तो कड़ो प्रोडक्ट वठण की तुम सोचो था कड़ो प्रोडक्ट तुम वी चुका हो इस्तेमाल भी कर पाया छो तो जे मू अ सोचन था ना उन आ बाबा तुम जल्दी वेठो देर न कदा कर अगर तुम भी देर कदा तो तुम भी ब्लैक ब्लैक थी वा तो मैं नी चाहें तुम ब्लैक थी वो व्हाइट व्हाइट हो सोना सोना हो तुम व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या वो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स बिन्हीं जो इस्तेमाल कर अलावा जल्दी मोटी अचानी तुम्हारे तुम करें वो वही अचानी सो स्टेट यू स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग White Age and Skin Beauty Show is sponsored by White Age Beauty Products and Skin Beauty Products. लगाते रहिए खूबसूरत होते

0: हैदराबाद मटियारी।
1: दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
2: हेमे और डे टाइटनेस, चमक ऐसी डायमंड स्किन में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
3: ये जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम, हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन के बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ ॿिन ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे खत्म ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 Network, सिंध की आवाज।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार। क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी।

ओके क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा गाना यहाँ पर आप एंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं। व्हाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। यहाँ पर आपकी सिद्रा आपके साथ मौजूद है, मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो बताएं जरा मुझे कि अगर एक हफ्ते के लिए आप लोगों का मोबाइल ले लिया जाए तो उस एक हफ्ते में आप क्या करने वाले हैं। वैसे तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों से ले ही लेना चाहिए।

ऐसे भागे लोगों को अगर मोबाइल दे देते ना लोग, तो फिर वो वाकई जो है ना वो आतंक मचा देते हैं। तो ऐसे लोगों से मोबाइल ले लेना ही चाहिए तो बेहतर है। इसी के साथ साथ अगर आप जो है इस्तेमाल करना चाहते हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, तो इनके बारे में मैं पूरे प्रोग्राम में आप लोगों को बताती रहती हूँ, और वो इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। और आसानी से मुराद ये कि अगर आप इस्तेमाल करें तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप जो प्रोडक्ट लगा रहे हैं वो क्यों लगा रहे हैं। ओके, सो जब हम डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बात करते हैं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो कि भाई खूबसूरत बनना चाहते हैं, जाहिर सी बात है। तो अगर आप भी हसीन और खूबसूरत बनना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करिएगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि विटामिन ई बीट्स और माइक्रोबीट फार्मुलेशन से तैयार की गई है, और पाकिस्तान में देखा जाए तो 2-3 क्रीमें ऐसी हैं जिनके अंदर विटामिन ई बीट्स हैं, और उसी में डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी शामिल होती है। डॉक्टर से बिल्कुल जनाब इसे मालूमात के साथ साथ तैयार किया गया है, इस तरह की कोई भी चीज ऐड नहीं की गई है कि आप लोगों की स्किन के लिए नुकसान हो। तो आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम टाइप के लिए। और इसी के साथ साथ जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ आपने डी स्किन फेस वॉश भी लाजमी ट्राई करके देखना है। तो डी स्किन फेस वॉश जो कि हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है, तो लाजमी लगाइए, खूबसूरत हो जाइए और खूबसूरतियों को हासिल करते जाइए। नहीं नहीं आपको नहीं बोला था, आप तो नहीं, आप तो समझदार हैं, वो बात जरा किसी और की थी।

शोनी क्या कहती हैं? शोनी कहती हैं आप ही जान में भी आ गई आपके शो में, आप ही अभी लंच करके अपने रूम में आई हूँ और मेरा आप शो सुन रही हैं, क्या बात है, बहुत शुक्रिया जी। और मुझे बताएं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आपने क्या सोचा है, कब लगाएंगे?

अच्छा दर्द दिल कहती है कि चंदा अलीजा टॉपिक का जवाब दे रही हैं कि मेरे पास तो मोबाइल है ही नहीं, मैं तो अच्छा चले मेरा वक्त तो अच्छा गुजरेगा आपका शो सुनकर, कॉल भी वो मेरे मोबाइल से करती है, आपके मोबाइल से करती है, लेकिन आपने कभी बात नहीं करी है, इतनी क्यों शर्मीली है आपने दर्द। अच्छा किशोर भाई कहते मानो अला के साइलेंट थी शो बुधन था हू भी तो जेडी आरजे जो ना मुमकिन हू भी अ मिनट अला के पाना के रोकियो मां भी सोचा लाए कादे वयो दो मुखे लगे पे अज भी ता सुमी प्यायो नडी वांगे।

अजय साइमा तो गाना अच्छा सोनी कहती है जब मैं इस्लामाबाद जाऊंगी तो वहां से लूंगी क्योंकि मैं सारी चीजें वहां से लेती हूँ, अगर वहां पर ना मिले तो इसीलिए बेहतर होगा कि आप यहीं से परचेज करके जाइएगा। ठीक है, देखिए मुझे कितना आप लोगों का ख्याल है।

अच्छा एएम अंसारी कहते हैं सिडो मेरा खर्चा आपने बढ़ा दिया, कोई मुझे कह रहा है कि शाम तक मिल जाए वाइट एज के प्रोडक्ट्स में। सच्ची बोले ये तो अच्छी बात है ना, थोड़ा खर्चा भी कर लिया कर। और वासु भाई कहते अदी सिद्धो असांजा ही बकला के तमाम सा गड प्यारा गुजरंदा है, मुझा भी यकीन करो। मोहम्मद अली खोसो कहते हैं एक हफ्ते के लिए मेरा कोई सेल फोन ले जाएगा, पूरा हफ्ता वो मुझे भी ले जाए अपने साथ। चले ये ठीक है। अच्छा आदिल तमाम जो गाना सुबह ही बुधंदा से ठीक है।

हाँ बाबा एतरी गाल ते छो नाराज थी वेंदा आहिनि, ढोल वरी पो मनीदा नहीं है। अच्छा ये गाना बहुत ही प्यारा गाना है, पता नहीं क्यों ये मुझे अच्छा लगता है। और इसी के साथ साथ जी आप हमारा शो सुन रहे हैं व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो और व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी यूज कर रहे हैं। क्रीम आप लगा और जनाब आप लाजमी जो है वो ट्राई करके देखिएगा, बिलारो अच्छा किया। वैसे तो कल आप मुझे 1 बजे ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है।

0: हैदराबाद मोटरवे मनसूबे लाइ वधीक बजट रखण जो इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सदारत हेठ बिजली विरिहाईंदड़ कंपनी जी रिजकारी बाबत इजलास। वज़ीर आज़म जी बिजली विरिहाईंदड़ कंपनी जी रिजकारी वारो अमल तेज करण जी हिदायत। इजलास के ब्रीफिंग डींदे बुधायो त पहिरें मरहले में इस्लामाबाद गुजरावाला फैसलाबाद रेक्टक जी निजकारी कई वेंदी। काबीना कमेटी निजकारी जी मंजूरी बि ॾेई चुकी आहे। शहबाज़ शरीफ़ चयो त खसारे मिलंदड़ रियासती इदारे जी निजकारी हुकूमत जी पहिरीं तरजीह आहे। लबनानी फौज जे सरबराह जनरल रोडलिफ हेकल जी जीएचक्यू आमिर फील्ड मार्शल सदास मुनीर सां मुलाकात। गडि॒यल दिलचस्पी वारनि मामलनि, खिते जी तब्दील थींदड़ सूरतहाल, दिफ़ाई सहकार ऐं फ़ौजी लाॻापनि खे वधीक ख़ती ॾियण ते ॻाल्हि ॿोल। फील्ड मार्शल पारां लबनानी फ़ौज सां दिफ़ाई सहकार खे वधीक ख़ती ॾियण वारे अज़म जो वर्चाओ। लबनानी फ़ौज जे सरबराह पारां पाक फ़ौज जी पेशेवरानी सलाहियतुनि जी साराह, खिते में अमुन ऐं इस्तक़ाम बंद कोशिशुनि ते भेटा पेश कई। आईएसपीआर मूजिब जीएचक्यू पहुचण ते लबनानी कमांड इन चीफ खे पाकिस्तानी फ़ौज दस्ते गार्ड ऑफ ऑनर पेश कयो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान सां ॾींहं ॿिनि में सुठो मुआदो थियण लाइ पुरउमीद। वाशिंगटन में सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो त विच ओभर में अमन मुआदे वारियूं कोशिशूं आख़िरी मरहले में आहिनि। ॿिनि खां टिनि ॾींहनि में सुठो मुआदो थी सघे थो। ईरान जी नाकाबंदी बरक़रार आहे। तेहरान तेल वेकिरो नथो करे सघे। ॻाल्हियूं जंग जो हिसो आहिनि। अमरीकी सदर जे ॻाल्हियुनि में संजीदगी नज़र आई त ॻाल्हियुनि ते को बि एतराज़ न हूंदो। ईरान जी क़ौमी सलामती बाबति वधी सघनि थियूं। गडि॒यल क़ौमनि में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरवानी चयो त अमरीका सां मुआदे खे हतमी शकल ॾियण लाइ अमरीका सां पाकिस्तान ज़रिए ॻाल्हियूं जारी आहिनि। जंगबंदी जे मसूदे में लबनान समेत सभई इलाका शामिल कया वेंदा। अञा ताईं को बि मुआदो न थियो आहे, पर कोशिशूं जारी आहिनि। चैंपियनशिप हेलीकॉप्टर किरी तबाह, ॿई पायलट महफ़ूज़ रहिया। सदर ट्रंप अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर किरी तबाह थियण जी तस्दीक कंदे चयो आहे त हादसे सबबि कंहिं बि शख़्स खे को नुक़सान नाहे पहुतो। हेलीकॉप्टर ईरानी फ़ौज जी फायरिंग सबबि तबाह थियो। या हादसे जो शिकार जांच जारी। खारजी फितने भारत आज़ाद कश्मीर जे पाबंदी मणियल इलेक्शन कमेटी जो गठजोड़ बेनकाब। अफ़ग़ानिस्तान में मौजूद खारजी ऐं भारतीय गुझे इदारे राज सरगर्म खारजी शहज़ाद जूं पाबंदी मणियल तंज़ीम खे हिदायतूं ॾियण वारी आडियो साम्हूं अची वई। खारजी शहज़ाद पारां भारत पारां लिखियल बयान पढ़ी पाबंदी मणियल ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी खे हिदायतूं ॾेई रहियो आहे। माहिरनि मूजिबि खारजी जो ॾुखंदड़ आवाज़ करे रहियो आहे त खेसि हिदायतूं भारत ॾेई रहियो आहे। सिंध हुकूमत पारां कराची जे न्यू सब्जी मंडी में ट्रांसपोर्टर्स लाइ सहूलियत डेस्क क़ाइम करण जो फ़ैसिलो। सीनियर वज़ीर शर्दीलीना मेमन सदारत हेठि ट्रांसपोर्ट खाते जो इजलास। ट्रांसपोर्टर्स लाइ वन विंडो सहूलियत क़ाइम करण जो फ़ैसिलो। शर्जील इनाम मेमन चयो त क़दम जो मक़सदु 30 जून 2026 ताईं कमर्शियल गाॾियुनि खे डिजिटल ऐं ऑटोमेशन निज़ाम में शामिल करण आहे। सिंध हुकूमत अवामी ख़िदमत ऐं ट्रांसपोर्ट शोबे में मुकमल डिजिटाइजेशन जे नज़रिये ते कम करे रही आहे। सिंध हाई कोर्ट में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे इम्तिहानी नतीजनि ख़िलाफ़ दाख़िल दरख़्वास्तनि ते ॿुधणी। दरख़्वास्त गुज़ारनि तरफ़ां तरमीमी दरख़्वास्त दाख़िल, कामयाब करार ॾिनल उमेदवारनि खे धुर बणायो वियो। अदालत कमीशन खां लिखत ऐं ज़बानी इम्तिहाननि जो मुकमल तरीक़ेकार तलब करे वरितो। समूरा तफ़सील ऐं तरीक़ेकार ईंदड़ ॿुधणी ते पेश करण जो हुकम।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट। भरोसा भी, रफ्तार भी, बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: जी हाँ,
1: मैं आपका शो सुन रहा हूँ भाई।
0: चले, अच्छी बात है। ये जो प्रोग्राम कनेक्ट हुआ है, ये नात जब चली है, जब से कनेक्ट हुआ है, आप टॉपिक पे बात करेंगे या आपने सिर्फ यही बताना था?
1: मैं टॉपिक नहीं सुना, आपका प्रोग्राम हेलमेट चल रहा है।
0: चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आपने बताया, आप नहीं बताते तो मुझे पता ही नहीं चलना था, मैं तो बेखबर रह जाती, खामा खा जरा सी बात पे मैं बीमार पड़ जाती। थैंक यू, आपने बताया। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम गुलाम अजीज सोलंकी का।
0: अदा वेलकम कहेंगे आपको। खवातीन अपनी उम्र मर्द हजरात अपनी तनख्वाह क्यों छुपाते हैं, इसकी वजह क्या है?
2: अभी खवातीन पंहिंजी उमिरि घटि इन जे करे ॿुधाइनि थियूं त चवनि थियूं त माना जवान सदाई माना सदाया तोरी न माना हिकिड़ो जो माण्हू पुछे घणी तुंहिंजी जमार आहे त फिलहाल जी चवंदी मुंहिंजी 35 साल आहे। बिल्कुल कोशिश यही कर रहे हो।
0: चले, और मर्द हजरात अपनी तनख्वाह क्यों छुपाते हैं, इसकी क्या वजह है?
2: मर्द हजरात पंहिंजो पघार घटि इन जे करे ॿुधाईंदा आहिनि त को माण्हू असांखे सवाल न करे या घुरे उधारा न घुरे, इन जे करे चवंदा आहिनि यार हिन यार मूंखे घटि मिलियो, मूंखे जेको थो फिलाणे माण्हू जी उधर लाहिणी आहे एतिरा मूंखे गुंजा सचे कोन थो।
0: आपने भाभी को अपनी तनख़्वाह बताई हुई है?
2: अभी आऊं दुखी में ना अल्लाह जे करम से मूड पांजी जमींदारी है को बस आसान जो जेड़ो आलम दलाए कद होता
0: है। चले, अच्छी बात है। आपकी बेगम तो नहीं कहती है लिखाओ सारे के सारे पैसे इधर रखो मेरी हथेली पे वरना खाना नहीं देने वाली मैं आपको? चले चले, अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया था, आप शाम ले प्रोग्राम हुए। थैंक यू
2: सलाम गुलाब थोड़ा प्रेम शुरू वाले प्रोग्राम जो कॉलर के घट तो मिले थोड़ो इो मेरी और प्रेम जो अंदाजो रखनी सजो।
0: चले, कोशिश करूंगी। कॉलर्स ने आके दोस्तों को सलाम देने होते हैं, उन बिचारों को मेरे टॉपिक कहाँ नजर आते हैं बिचारों को, मैं क्या कॉल्स पे लूं लिसनर्स को। उन्होंने आके अपने दोस्तों का नाला 5-10 दोस्तों के नाम ही लेने हैं। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। भली कर रहा तव्हां खे भी, क्या कहेंगे टॉपिक के हवाले से?
3: अभी टॉपिक के बारे में मर्द हज़रात माना इन करे पघार की सची कोन कंदो आहे के वक्त सरकम अचे ऐं ख़वातीन जेको आहे उहो चवे पघारी उमिरि ॿुधायां त कोई ईअं न चवे त उहो 40 साल जी आहे को 30 साल जी घटि उमिरि ॿुधाईंदी आहे।
0: अच्छा, उहो सभु कम उमिरि दिखने के लिए इहे उमिरि बताती है की हम कम उमिरि
3: सभु
0: कुझु नौजवान। चले, ठीक हो गया। दोस्तों के नाम लेंगे आप भी? ठीक है, बहुत शुक्रिया। जितनी देर में 5-7 नाम होते हैं इतनी देर में और काले भी आ जाती हैं। नेक्स्ट ये कि ब्रेक पे जाने वाले हैं, ब्रेक के बाद अगेन आपको ज्वाइन करते हैं।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88
1: नेटवर्क डॉक्टर दोहा राजड़ एस्थेटिक एंड डेंटल क्लिनिक ते लेडी डॉक्टर डॉक्टर दोहा राजड़ कंसल्टेंट डेंटल सर्जन।
2: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
0: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
4: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए। आपको

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: पंहिंजे वाधू फंड लाइ कोशिशूं करे रही आहे। पंजाब में वफ़ाक खे 620 अरब रुपए ॾियण जी तजवीज़ आहे। सिंध मां 310 अरब, केपी मां 180 अरब ऐं बलोचिस्तान 85 अरब मर्कज़ खे ॾियण जी तजवीज़। बजेट में एनएफसी तहत सूबनि खे 8776 अरब।

फील्ड मार्शल पारा लबनानी फौज शांतिफाई शिकार के वधिक हथी डण वाले अजम जो वर्छाओ लबनानी फौज सरबराह पारा पाक फौज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान सां डीह बिन में

0: जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुजा मस्त मलंग ही मारू डुगर खा भी दादा नियर नई का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे की करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी डाढा मियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क
1: मीरपुर खास शहर में डॉक्टर दोहा राजड़ एस्थेटिक

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो। सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर था भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डूंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे की कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो लई।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: ही आहे सिंधजी दिल जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुजा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी दादा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: शहबाज शरीफ होता खसारे मलंदार रियासती दार लब्तानी फौज के सरबराह जनरल रोडर

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।

کے ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے۔ GFM 88 نیٹ ورک، GFM 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार। क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिलीवरी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: Jacobabad, Nawabshah, Quetta and Chitral.

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

नए माली साल जे तरक़ियाती बजट लाइ सूबनि खां 1200 अरब रुपया वठण जी तजवीज़। पंजाब वफ़ा खे तरक़ियाती फंड्स लाइ पैसा ॾियण जी ख़ातिरी कराए छॾी। सिंध हुकूमत बि सूबाई वसीलनि बाबति सदर ज़रदारी खे आगाही ॾेई छॾी। वफ़ाक खे सिंध मां फंड्स जी फरहमी बाबति हतमी फ़ैसिलो सदर आसिफ़ ज़रदारी कंदो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जी सदर आसिफ़ ज़रदारी सां मामले ते अॼु मुलाकात थियण जो इम्कान। ज़रियन मूजिब इसहाक़ डार जी सदारत हेठि टेक्निकल कमेटी 1200 अरब रुपियनि जे वाधू फंड्स लाइ कोशिशूं करे रही आहे। पंजाब मां वफ़ाक खे 620 अरब रुपया ॾियण जी तजवीज़ आहे। सिंध मां 310 अरब, ख़ैबर पख़्तूनख़्वा मां 180 अरब ऐं बलोचिस्तान मां 85 अरब मर्कज़ खे ॾियण जी तजवीज़ शामिल। बजट में NFC तहत सूबनि खे 8746 अरब रुपया मिलण जो इम्कान हो। नए माली साल में सूबनि खे 7581 अरब मिलंदा।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो लई।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डूंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे की करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: ही आहे सिंध जी दिल ये मटियारे एफ एम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुंगर खां भी दादा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुंगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज में आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुगर था भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: ही आहे सिंध जी दिल ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुजा मस्त मलंग ही मारू डुगर खां भी दादा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो लई
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: आग भी लगा।
1: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलबीब का अलबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू सुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे की करो नहीं।
2: वो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: मोहब्बत थी यार, मेरी जिंदगी थी वो,
1: मेरी जिंदगी है तू,
2: मेरी जिंदगी है तू। देखिए हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।

0: किया है सिंध जी दिल। ये 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: ट नेटवर्क सिंकी आवाज
1: काश हमारे पास वैसी गाड़ी होती चमचमाती भी।
2: चलो दिल को संभाल के रखो दुल्हन, ये ना हो कि गाड़ी के चक्कर में तुम्हारा ये ड्राइवर के हाथ से निकल जाए।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुंगर राधा, नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, आवाज

0: कहती है अम्मी, मैं मनोज हूँ उनकी जिंदगी में, अगर मैं नहीं होती तो सब कुछ सही होता।
1: देखिए मोहलत रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।

0: किया है सिंधजी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

देखिए कलंदर 14 अक्टूबर से जुम्मा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कहीं मारू डूंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कहीं मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे की करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे की करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू सुगर खा भी दादा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6
0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6
2: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
3: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो
4: अब आप सुनेंगे अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
5: सुभाणे शाम 5 वॻे तलब सेनेट जो इजलास बि सुभाणे शाम जो 4 वॻे थींदो सदर वज़ीर आज़म जी एडवाइस ते इजलास तलब कया विया पार्लियामानी मामलनि वारे वज़ीर तारिक फज़ल चौधरी चयो आहे त नए माली साल जी बजट 12 जून ते पेश करण जो इम्कान आहे नाणे वारो वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब माली साल 2026-27 जी बजट पेश कंदो साॻे ॾींहं ते बजट सेनेट में बि पेश थींदी

नए माली साल जे तरक्याती बजट लाइ सूबनि खां 1200 अरब रूपया वठण जी तजवीज़। पंजाब वफ़ाक़ी तरक्याती फंड्स लाइ पैसा ॾियण जी ख़ातिरी कराए छॾी। सिंध हुकूमत बि सूबाई वसीलनि बाबति सदर आसिफ अली ज़रदारी खे आगाही ॾेई छॾी। वफ़ाक़ी सिंध मां फंड्स जी फरहमी बाबति हतमी फ़ैसिलो सदर आसिफ अली ज़रदारी कंदो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ आसिफ सदर आसिफ ज़रदारी सां मामले ते अॼु मुलाक़ात थियण जो इम्कान। ज़रियनि मूजिब इसहाक़ जी सदारत हेठि टेक्निकल कमेटी 1200 अरब रूपियनि जे वाधू फंड्स लाइ कोशिशूं करे रही आहे। पंजाब मां वफ़ाक़ी 620 अरब रूपिया ॾियण जी तजवीज़ आहे। सिंध मां 310 अरब, केपी मां 180 अरब ऐं बलोचिस्तान मां 85 अरब मर्कज़ खे ॾियण जी तजवीज़। बजट में एनएफसी तहत सूबनि खे 8746 अरब रूपिया मिलण जो इम्कान हो। नए माली साल में सूबनि खे 7581 अरब मिलंदा। खारजी फितने भारत ऐं आज़ाद कश्मीर जी पाबंदी बढ़ियल इलेक्शन कमेटी जो गठजोड़ बेनकाब। अफ़ग़ानिस्तान में मौजूद खारिजी ऐं भारतीय गुझे इदारे राज सरगर्म खारिजी शहज़ाद जूं पाबंदी बढ़ियल तंजीम खे हिदायतूं ॾियण वारी आडियो साम्हूं अची वई। खारिजी शहज़ाद भारत पारां लिखियल बयान पढ़ी पाबंदी बढ़ियल ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी खे हिदायतूं ॾेई रहियो आहे। माहिरनि मूजिब खारिजी जो ॾकंदड़ आवाज़ वाज़े करे रहियो आहे त खेसि हिदायतूं भारत ॾेई रहियो आहे। रावला कोट समेत समूरी आज़ाद कश्मीर में हालतूं कंट्रोल हेठा आहिनि। माण्हुनि जी जान ऐं माल जी हिफ़ाज़त कई पई वञे। मुमलकती वज़ीर तलाल चौधरी चयो आहे त पाबंदी बढ़ियल तंज़ीमूं वाइकियूं थी रहियूं आहिनि। हिकु आडियो बि साम्हूं आई आहे। कश्मीरियुनि जो हक़ आहे त उहे कानून साज़ी कनि। छा ई कश्मीरियुनि जो हक़ कंहिं ॿिए खे ॾियण चाहिनि था? वफ़ाक़ी हुकूमत आज़ाद कश्मीर जे मामले ते का कसर नाहे छॾी। आज़ाद कश्मीर में फोतगियुनि बाबति तफ़सीली प्रेस रिलीज़ जारी कई वेंदी। पीपल्स पार्टी जो गिलगित बल्तिस्तान में आज़ाद उम्मीदवारनि सां गॾिजी हुकूमत ठाहिण ते गौर। पीपी अॻवान अदीब अफ़ज़ल चंद चयो आहे त पीपल्स पार्टी आज़ाद उम्मीदवारनि सां गॾिजी गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत ठाहिण जी कोशिश कंदी। फिलहाल भुट्टो जी बि कुझु ॾींहनि में गिलगित वञण जा इम्कान। गिलगित जी चूंडनि में पीपल्स पार्टी 10, आज़ाद 7, नून लीग 6 ऐं 1 सीट ते MWM कामयाबी माणी आहे। गिलगित बल्तिस्तान जे चीफ इलेक्शन कमिश्नर मूजिब 5 टकनि जे कुझु पोलिंग स्टेशन ते 15 जून ते 20 पोलिंग कराई वेंदी।

0: बर्तानिया पढ़ लाइ वींदड़ 10,000 पाकिस्तानियन उते पनाह वठी छड़ी। घरू मामलन बाबत कौमी असेंबली जी स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में इंकशाफ। DGFIA उस्मान अनवर कमेटी के ब्रीफिंग दीदे बुधायो तो गैर कानूनी तौर परे वींदड़ पाकिस्तानी मुल्क की बदनामी जो सबब बणजी रहा है। यूरोपीय यूनियन ए बेन मुल्कन इहो मामलो उथारियो है। बर्तानिया में स्टूडेंट वीजा ते वींदड़ 10,000 का वधिक पाकिस्तानियन भी वीजा जो गलत इस्तेमाल करे उते पनाह वठी छड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ सां ज़री शोबे जे स्टेक होल्डर्स जे वफद जी मुलाकात। वफद में हारी तंज़ीमनि जा अॻवान डेरी तोड़ी लाइव स्टॉक बिज ठाहिण वारियुनि कंपनीज़ क़ौमी ऐं मल्टी नेशनल कंपनीज़ जा नुमाइंदा बि शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चयो त पाकिस्तान जी मईशत बहाल करण में ज़री शोबो इनकलाबी तब्दीली आणण में भरपूर सलाहियत रखे थो। वज़ीर आज़म डेरी ऐं लाइव स्टॉक खे हथी ॾियण लाइ पेश कयल तजवीज़नि जी आजियां कई। वज़ीर आज़म जी सदारत हेठि बिजली विराईंदड़ कंपनीज़ जी निजकारी बाबति बि इजलास थियो। इजलास खे ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो वियो त पहिरें मरहले में इस्लामाबाद गुजरावाला ऐं फैसलाबाद इलेक्ट्रिक जी निजकारी कई वेंदी। काबीना कमेटी निजकारी जी मंज़ूरी बि ॾेई चुकी आहे। शहबाज शरीफ चयो त खसारे में हलंदड़ रियासती इदारनि जी निजकारी हुकूमत जी पहिरीं तरजीह आहे। लेबनानी फौज जे सरबराह जनरल रोडोल्फ हेकल जी GHQ आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर सां मुलाकात। गडियल दिलचस्पी वारनि मामलनि खिते जी तब्दील थींदड़ सूरतहाल दिफ़ाई सहकार ऐं फौजी इलाक़ापनि खे वधीक हथी ॾियण ते ॻाल्हि ॿोल। फील्ड मार्शल पारां लेबनानी फौज सां दिफ़ाई सहकार खे वधीक हथी ॾियण वारे अज़म जो वर्जाउ। लेबनानी फौज जे सरबराह पारां पाक फौज जी पेशवराणियुनि सलाहियतनि जे सारा खिते में अमन ऐं इस्तेहकाम वारियुनि कोशिशनि ते भेटा पेश। ISPR मूजिब GHQ पहुचण ते लेबनानी कमांडर इन चीफ खे पाकिस्तानी फौज जे दस्ते गार्ड ऑफ ऑनर पेश कयो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प ईरान सां ॾींहं ॿिनि में सुठो मुआदो थियण लाइ पुरउमीद। वॉशिंगटन में साफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो त विच ओभर में अमन मुआदे वारियूं कोशिशूं आख़िरी मरहले में आहिनि। ॿिनि खां टिनि ॾींहनि में सुठो मुआदो थी सघे थो। ईरान जी नाकाबंदी बरक़रार आहे। तेहरान तेल विकिरो नथो करे सघे। ॻाल्हियूं जंग जो हिसो आहिनि। अमरीकी सदर जी ॻाल्हियुनि में संजीदगी नज़र आई त ॻाल्हियुनि ते को बि एतराज़ न हूंदो। ईरान जी क़ौमी सलामती बाबति सलाहकार इब्राहिम अज़ीज़ी चयो आहे त ॻाल्हियुनि में मज़ामती महाज़ ऐं लबनान वारे मामले तां पोइ ते न हटंदो। अमरीका एतबार जोगो नाहे। लबनान ते अॻभराई थी त ॻाल्हियूं अॻिते वधी सघनि थियूं। गडियल क़ौमनि में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद एरवानी चयो आहे त अमरीका सां मुआदे खे हतमी शकल ॾियण लाइ अमरीका सां पाकिस्तान ज़रिए ॻाल्हियूं जारी आहिनि। मसवदे में लबनान समेत सभई इलाइक़ा शामिल कया वेंदा। अञा ताईं को बि मुआदो न थियो आहे पर कोशिशूं जारी
1: आहिनि।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी दाधा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: नए माली साल जी तरक्याती बजट लाए सूबन का 1200 अरब रुपया वठण जी तजवीज। पंजाब वफा के तरक्याती फंड्स लाए पैसा देने जी खातरी कराई छी। सिंध हुकूमत बे सूबाई वसीलन बाबत सदर आसिफ जरदारी के आगाही डिनी। वफाक के सिंध में फंड्स की फरामी बाबत हतमी फैसलो सदर कंदो। वजीर आजम इसहाक डार सदर आसिफ जरदारी से मामले ते अज मुलाकात थियण जो इम्कान। जरिए मूजिब इसहाक डार की सदारत हेठ टेक्निकल कमेटी 1200 अरब रूपये की वादू फंड्स लाए कोशिशू कर रही है। पंजाब में वफाक के 620 अरब रूपया देने की तजवीज है। सिंध में 310 अरब रूपया, खैबर पख्तूनख्वा में 180 अरब ए बलोचिस्तान में 85 अरब मरकज के देने की तजवीज। बजट में एनएफसी तहत सूबन के 8746 अरब रूपया मिलने जो इम्कान हो। नए माली साल में सूबन के 7581 अरब मिलंदा।
2: खारजी खिते भारत ए आजाद कश्मीर की पाबंदी बढ़ल एक्शन कमेटी जो गठ जोड़ बेनकाब। अफगानिस्तान में मौजूद खारजी ए भारतीय गुजेदारे राह के सरगरम खारजी शहजाद जो पाबंदी बढ़ल तंजीम के हिदायतू डेण वारी आडियो सामू अची वही। खारजी शहजाद भारत पारा लिखल बयान पढ़ी पाबंदी बढ़ल जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के हिदायतू डेई रो है। माहिरन मूजिब खारजी जो डकदड़ आवाज वाजे कर रो है तो खेस हिदायतू भारत डेई रो है।
1: रावला कोट समेत समूरी आजाद कश्मीर में हालतू कंट्रोल हेठ आन मानन जी जान ए माल की हिफाजत कई पी वे। ममलकती वजीर तलाल चौधरी है पाबंदी बढ़ल तनसीमू वाइफू थी रही है। एक आडियो में सामू आई है कश्मीरियन जो हक है तो वे कानून साजी कन ही कश्मीर जो हक कें बे के डेण चाहन था। वफाकी हुकूमत आजाद कश्मीर के मामले ते का कसर ना छी। आजाद कश्मीर में फौदगिन बाबत तफसीली प्रेस रिलीज जारी कई वी।
2: बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज जो ऑपरेशन फितनतुल हिंदुस्तान जा 14 दहशतगर्द मारजी वा। ISPR मूजिब वेसी मियां वारे इलाके में ऑपरेशन दौरान फितनतुल हिंदुस्तान जे 14 दहशतगर्दन के मारियो वियो। केतई दहशतगर्द जख्मी भी थिया। ऑपरेशन दौरान दहशतगर्दन जूं 4 गाडियूं बारूदी मवाद ए हथियार तबाह किया विया।
1: वजीर आजम शहबाज शरीफ से ज़रई शोबे के स्टेक होल्डर्स के वफद की मुलाकात। वफद में हाली तंजीमन के अगवान डेयरी तोड़े लाइव स्टॉक बिज ठाण वाली कंपनियों कौमी ए मल्टीनेशनल कंपनियों जा नुमाइंदा भी शामिल हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ जो चवण हो तो पाकिस्तान की मैशत बहाल करण में ज़रई शोबो इनकलाबी तब्दीली आने में भरपूर सलाहित रखे तो। वजीर आजम डेयरी ए लाइव स्टॉक के हथी डेण लाइ पेश कल तजवीजों की आजिया कई। वजीर आजम की सदारत हेठ बिजली विरहदड़ कंपनीज की निजकारी बाबत भी इजलास थो। इजलास के ब्रीफिंग डींदे बुधाया वो तो पहली मरहले में इस्लामाबाद गुजरांवाला ए फैसलाबाद इलेक्ट्रिक की निजकारी कई वेंदी। काबीना कमेटी निजकारी की मंजूरी भी दे चुकी है। वजीर आजम जो चवण हो तो खसारे में हलंदड़ रियासती इदारन की निजकारी हुकूमत की पहली तरजीह है।
2: लेबनानी फौज के सरबराह जनरल रोडोल्फ हेकल की GHQ आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम उन से मुलाकात। गडल दिलचस्पी वाले मामलन खिते की तब्दील सूरतहाल दिफाई सहकार ए फौजी लागापन के हथी डेण से गाल बोल। फील्ड मार्शल पारा लेबनानी फौज से दिफाई सहकार के हथी डेण वाले अजम जो वर्जाव। लेबनानी फौज के सरबराह पारा पाक फौज की पेशावरानियन सलाहियतन की सारा खिते में अमन ए इस्तेकाम वाले कोशिशन भेटा पेश। ISPR मूजिब GHQ पहुंचण ते लेबनानी कमांडर इन चीफ के पाकिस्तानी फौज के दस्ते गार्ड ऑफ ऑनर पेश कयो।
1: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान से डीह बिन में सुठो मुआदो थियण लाइ पुरोमेन। वॉशिंगटन में सहाफिन से गालाईंदे सदर डोनाल्ड ट्रंप जो चवण हो तो विच ओभर में अमन मुआदे वारी कोशिशों आखिरी मरहले में दाखिल थी वयू आहिन। बिन खां टिन डीहन में सुठो मुआदो थी सके तो। ईरान की नाकाबंदी बरकरार आहे। तेहरान तेल विक्रो नथो करे सके।
2: गालियूं जंग जो हिस्सो आहे न अमरीक सदर जी गालियुनि में संजीदगी नज़र आई त गालियुनि ते को बि एतराज़ न हूंदो। ईरान जे क़ौमी सलामती बाबति सलाहकार इब्राहिम अज़ीज़ी चयो आहे त गालियुनि में मज़ामती माज़ ऐं लबनान वारे मामले तां पोइते न हटंदो। ऐं अमरीका एतबार जोगो नाहे लबनान ते घबराई थी त गालियूं अॻिते वधी सघनि थियूं। गडि॒यल क़ौमनि में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरवानी चयो आहे त अमरीका सां वाइदे खे हतमी शकल ॾियण लाइ अमरीका सां पाकिस्तान सॼे गालियूं जारी आहिनि। जंगबंदी जे मसवदे में लबनान समेत सभई इलाइक़ा शामिल कया वेंदा। अञा ताईं को बि मुआदो न थियो आहे पर कोशिशूं जारी आहिनि।
1: बहरीन नेशनल गार्ड जे कमांडर हेज हाइंस जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा जी GHQ अमन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सां मुलाकात। ISPR मूजिब मुलाकात में बितरफ़ी दिफ़ाई सहकार, इलाक़ाई सिक्योरिटी सूरतहाल ऐं अस्करी राब्तनि खे हथे ॾियण लाइ तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल्हि थी। इन खां अॻु जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफ़ा चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ऐं चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ज़हीर अमन बाबर सिद्धू सां बि मुलाक़ात कई।
2: बरतानिया पढ़ण लाइ वेंदड़ 10,000 पाकिस्तानियुनि हुते पनाह वठी छॾी। घरू मामलनि बाबति क़ौमी असेंबली जी स्टैंडिंग कमेटी जे इजलास में इंकशाफ़। DG FIA उस्मान अनवर कमेटी खे ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो त ग़ैर क़ानूनी तौर पढ़ी वेंदड़ पाकिस्तानी मुल्क जी बदनामी जो सबब बणजी रहिया आहिनि। यूरोपीय यूनियन ऐं ॿियनि मुल्कनि इहो मामिलो उथारियो आहे। बरतानिया में स्टूडेंट वीज़ा ते वेंदड़ 10,000 खां वधीक पाकिस्तानियुनि बि वीज़ा जो ग़लति इस्तेमाल करे हुते पनाह वठी छॾी आहे।

सिंध हाई कोर्ट में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान नतीजन खिलाफ दरख्वास्तन ते बुधलीन दरख्वास्त गुजारन तरफा तरमीमी दरख्वास्त दाखिल कामयाब करार डिनल उम्मीदवारन के धुर बनायो वयो। अदालत कमीशन का लिखित ए जबानी इम्तिहान जो मुकम्मल तरीकेकार तलब करे वरतो। समूरा तफसील ए तरीकेकार ईंदड़ बुधणी ते पेश करण जो भी हुकुम।

डाली भरसां डाची जो अखियूं कढण वारो अफ़सोसनाक वाकियो। वॾे वज़ीर फवाद अली शाह नोटिस वठंदे डीआईजी मीरपुर ख़ास खां रिपोर्ट तलब करे वरिती। मुलविस जवाबदारनि ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई जो हुकुम। गोठ बंगल रिंद में पेशी सिफ़त जवाबदारनि सूआ डाची जूं अखियूं कढी छॾियूं। बाक़ी ख़िलाफ़ ॻोठाणनि जो छाछरे में एहतजाज।

0: ॿी कलाक लोड शेडिंग आहे, इहो ॾियनि था कलाक ॿ पंज ॾह मिंट हले थी, वरी डिप थी थी वञे।
1: टिनि ॾींहंनि खां वठी लाइट कोन्हे।
2: कल्ह जेको हर शहर जो आहे वीह कलाक चोवीह कलाक बंदि ई
3: बिजली चोरी कोन थी। पंहिंजो पाण लोक था वठनि, मूंखे कूड़े ते क़ुरान मथे थी ॾे। हे अचनि था रोक था वञनि, टे सियारे खां कूड़े ते पंज हज़ार महीनो था वञनि।
4: असांजो लहो ई आहे, बिजली किथे वञनि था या बिजली बिजली वारा न आबनि, कलाक बि कोन था ॾियनि।
0: शहर में मां त सम्झा रुगो छह कलाक आहे, अरिड़हं कलाक गुम
1: सॼो ॾींहुं ॾिसो था। ज़ुल्म आहे इहो, अचे थी अधु कलाक वरी कलाक गुम, ॿ कलाक गुम आहे।
5: बिजली जो रुगो नालो आहे, बाक़ी बिल वॾा आहिनि।
6: अचरा बि लोड शेडिंग ख़तम थी वञे,
7: ख़ुदा जो को कहर नाज़ुल थियनि, बाक़ी लाइट आहे ई कोन।

0: सिंध में कहर जी गर्मी ए बिजली जी बदतरीन लोड शेडिंग आवाम जो जीण डुख्य बनाए छद। गर्मी विगे एक सब इंस्पेक्टर समेत बजण फौत। लोड शेडिंग खिलाफ मुख्तलिफ शहर में एहतजाजी मुजाहरा। नौदेर जो गोट सोडो जेहो वासी सब इंस्पेक्टर सफर जेहो गर्मी की सट न सहंदे नैदेर अस्पताल में दम डिनो। हैदराबाद के कोहनूर चौक से भी गर्मी विगे पीरसन फौत। कहर की गर्मी में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग खिलाफ कंदकोट में शहरी इंडस हाईवे से धरणो हो। खैरपुर में भी बिजली की लोड शेडिंग ए बर्फ महंगी थियण खिलाफ शहरन जो एहतजाज। कंबर में गर्मी की मारल शहरन बर्फ के एतराज कोर्ट खिलाफ एहतजाज कयो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो
3: 91.6।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो लई।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर था भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंधी दिल ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: मोहब्बत थी यार, मेरी जिंदगी थी वो,
1: मेरी जिंदगी है तू,
2: मेरी जिंदगी है तू। देखिए हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे की कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: काश हमारे पास वैसी गाड़ी होती चमचमाती भी।
4: चलो दिल को संभाल के रखो दुल्हन, ये ना हो कि गाड़ी के चक्कर में तुम्हारा ये ड्राइवर के हाथ से निकल जाए।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुंगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे की कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: होती अम्मी, मैं मनहूस हूँ उनकी जिंदगी में, अगर मैं नहीं होती तो सब कुछ नहीं होता।
1: मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी दे दे।
2: देखिए मोहलत रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।
3: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो ख़ूबसूरत लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार, ताज़गीअ सां गॾु। आयोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

0: किया है सिंधजी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलग ही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

देखिए कलंदर 14 अक्टूबर से जुम्मा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।

0: ਕਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਾ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਹੇ ਸਕੀ ਖੜੋ ਨਹੀਂ।
1: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर था भी दादा नियर नहीं का चीज न आहे नकी करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: नायब वजीर आजम इसहाक डार जी सदर आसिफ अली सरदारी सां मामले ते अॼु ई मुलाकात थियण जो इम्कान। ज़रियनि मूजिबि इसहाक डार जी सदारत हेठि टेक्निकल कमेटी 1200 अरब रूपियनि जे वाधू फंड्स लाइ कोशिशूं करे रही आहे। पंजाब मां वफ़ाक़ खे 620 अरब रूपया ॾियण जी तजवीज़ आहे। सिंध मां 310 अरब, केपी मां 180 अरब ऐं बलोचिस्तान मां 85 अरब मर्कज़ खे ॾियण जी तजवीज़। बजट में NFC तहत सूबनि खे 8746 अरब रूपया मिलण जो इम्कान हो। नए माली साल में सूबन के 7581 अरब मिलंदा। कौमी असेंबली ऐं सेनेट जा इजलास सुभाणे तलब। बजट 12 जून ते पेश थियण जो इम्कान। सदर वज़ीर आज़म जे एडवाइस ते कौमी असेंबली जो इजलास सुभाणे 5 वॻे ऐं सेनेट इजलास 5-4 वॻे तलब करे वरिता। वफ़ाक़ी वज़ीर तारिक फज़ल चौधरी चयो आहे त नए माली साल जी बजट 12 जून ते पेश करण जो इम्कान आहे। नाड़े वारो वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब माली साल 2026-27 जी बजट पेश कंदो। साॻे ॾींहं ते बजट सेनेट में बि पेश थींदी। पीपल्स पार्टी पारां गिलगित बल्तिस्तान में नवाज लीग बदिरां आज़ाद उम्मीदवारनि सां गॾिजी हुकूमत ठाहिण जी तयारी। पीपी अॻवान नदीम अफ़सल चंद चयो आहे त आज़ाद उम्मीदवारनि सां गॾिजी गिलगित में हुकूमत ठाहिण जी कोशिश कंदासीं। बिलावल भुट्टो जा बि कुझु ॾींहनि में गिलगित वञण जा इम्कान। गिलगित जी चूंडनि में पीपल्स पार्टी 10, आज़ाद 7, नून लीग 6 ऐं 1 सीट ते MWM कामयाबी माणी आहे। गिलगित बल्तिस्तान जे चीफ इलेक्शन कमिश्नर मूजिबि 5 तकनि जे कुझु पोलिंग स्टेशन ते 15 जून ते ॿीहर पोलिंग कराई वेंदी। खारजी फितने भारत ऐं आज़ाद कश्मीर जी पाबंदी बणियल एक्शन कमेटी जो गठजोड़ पिण कयो। अफ़ग़ानिस्तान में मौजूद खारजी ऐं भारतीय गुझे इदारे राज जी सरगर्म खारजी शहज़ाद जूं पाबंदी बणियल तंज़ीम खे हिदायतूं ॾियण वारी आडियो साम्हूं अची वई। खारजी शहज़ाद भारत पारां लिखियल बयान पढ़े पाबंदी बणियल ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी खे हिदायतूं ॾेई रहियो आहे। माहिरनि मूजिब खारजी जो ॾकंदड़ आवाज़ वाज़े करे रहियो आहे त खेसि हिदायतूं भारत ॾेई रहियो आहे।

बालाकोट समेत समूरी आजाद कश्मीर में हालतू कंट्रोल हेठा आया माण्डन की जान ए माल की हिफाजत कई पे वे उमरकती वजीर तलाल चौधरी है पाबंदी बढ़ियल तंजीमों वाइकू थी रही हैं। एक आडियो भी सामू आई है कश्मीर जो हक है कानून साजी कन कश्मीर जो हक कें बे के डेण चाहन था वफाकी हुकूमत आजाद कश्मीर